आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:56 और ठीक 2 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। हार केवल तब होती है जब कोशिश करना हम छोड़ देते हैं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत की शुरुआत है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: नजर जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर।
1: ये कार्यक्रम वंदनवार की भक्ति रचनाएं थी। लीजिए अब सुनिए देशगान।

लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान में लंका कांड, आज भाग 321 प्रसारित होगा। 6:45 पर और पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, आज भाग 9 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सुबह 7 बजे सुनिएगा भूली बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा, आलेख एवं स्वर सविता सिंह के, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं 8:30 पर और रात में 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार फिरोज खान पर। आलेख एवं स्वर अशोक सोनावने का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा बड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भदरगी का, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। सुबह 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। 1 बजे 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत आप सुनेंगे समुद्र यात्राओं का रोचक संसार, कहानी पद्मश्री की उषा बारले पंडवानी लोक गायिका के बारे में बात, मुझे कुछ कहना है कब किससे रूठे, उपयोगी टिप्स, फ्रिज में सामान कैसे रखें, मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव संवादक रहेंगी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 4 बजे, यूनुस खान संवादक हैं, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम, 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए मैं आप टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत सुनेंगे, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन टपकते सितारे, लेखन है सोमनाथ नागर का, निर्देशन कुमुद नागर का। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे। ये था झरोखा आज के कार्यक्रमों का। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंकाकांड में 321 भाग।

नल, नील, द्विध, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीछ जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य आ उपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीछ जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, भक्ति शास्त्र, छंद शास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ उ म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक है। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सभी में ईम काम बीज लगा है। यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द यानी देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला यह काम बीज है। दिर दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा, दी अर्थात दिव्यता, र जो है दिर का वो र अग्नि बीज है, अर्थात राति ददाति दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। देवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु। इसके अनुसार देर देर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना, अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना, अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति। लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है। यललोम, लोम जड़ता को कहते हैं। उसे निष्कासित करना अर्थात जाड यानी जड़ता को दूर करना है। द्री द्रेम आदर सूचक है। यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है। दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है। तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना, प्रस्तुत है राग भैरव में।

0: तराने में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तराना केवल तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लिकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है। यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थ ही नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार।
1: ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का नवा भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांग

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका नगरी के पावन प्रांगण में शिव की असीम कृपा का अनुभव हर भक्त को सहज ही हो जाता है। शिप्रा नदी के तट पर विराजे कालों के काल का दरबार एक अद्भुत चेतना से परिपूर्ण है। मंदिर में गूंजते वेद मंत्र और डमरू का पावन नाद हृदय को अपार शांति से भर देते हैं। त्रिलोकी नाथ के दर्शन मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। शिव की इसी अलौकिक महिमा का ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं बाबा के श्री चरणों में समर्पित ये मधुर वंदना मैथिली ठाकुर के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आज हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। उज्जैनी आरजे का आज समय होगा प्रातः 9:00। 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। सुबह 10:00 सिंहस्थ संवाद के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति अमृत घट बरसे का 13वां अंक हम आज आपको सुनवाएंगे। 10:15 पर होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आप हमें फोन लगाकर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। हमारा दूरभाष क्रमांक है 0734405-4191 0734405-4191। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा गणपति विसर्जन विशेष उत्सव 10 दिन का सीख उम्र भर की। सुबह 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। दोपहर 1:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। दोपहर 2:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिए फिल्म संगीत सदाबहार नगमे। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। महिला श्रोताओं का कार्यक्रम सखी सहेली आप सुन पाएंगे दोपहर 3:00। रोज शाम 4:00 खुलता है पिटारा, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। युववाणी युवा श्रोताओं की पसंद का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के प्रारंभ में शाम 5:00। शाम 6:00 समय होता है भजन संध्या का। 6:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 7:21 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात 8:00 सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही सुनिए आपकी फरमाइश रात 9:30 पर। रात्रि 10:00 20वें एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम डेली हाइलाइट्स कैप्सूल। 10:20 पर गीतों का गुलदस्ता और रात 10:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं आपको एक बार पुनः याद दिला दें आज सुबह 10:15 पर होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें फोन लगाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0734405-4191। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तापमान गिर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वाराणसी से वडनगर जा रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा आज देवास के पुंजापुरा पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बाइक राइडर से संवाद। सिंहस्थ 2028 के लिए 15,000 से ज्यादा प्रशिक्षित स्वयंसेवक संभालेंगे सेवा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। प्रदेश में 25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों का होगा संचालन। और प्रदेश में फिर तेज होगा बारिश का दौर, 25 और 26 सितंबर को पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी से वडनगर के लिए निकाली जा रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा आज देवास जिले के पुंजापुरा पहुंचेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा में शामिल बाइक राइडर्स से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितम्बर को वाराणसी से यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा में 250 बाइकों पर 500 सेवा यात्री शामिल हैं और ये विभिन्न राज्यों से होते हुए वडनगर पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के करीब 35 लाख हितग्राहियों के खातों में करीब 212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होगा और इसे भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी को पूरी क्षमता से तैयार होना होगा। डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में भारत स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों तथा स्वयंसेवकों के साथ संगोष्ठी में ये बात कही। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ में सेवा कार्यों और भीड़ प्रबंधन के लिए भोपाल में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 में 15,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवक 20 से ज्यादा कैंपों के जरिए सेवा का मोर्चा संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल वडोदरा में ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आध्यात्मिक जागरण भी शामिल होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की करीब 65% आबादी युवा है और युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सार्वजनिक यात्री बसों के संचालन की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के तहत प्रदेश में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलाई जाएंगी, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए GPS और पैनिक बटन की सुविधा होगी। सरकार ने वर्ष 2031 तक सार्वजनिक परिवहन में बसों की संख्या बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल 2500 से 3000 नई बसें जोड़ने की योजना है और चालकों को आधुनिक बसों के संचालन और सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस योजना के तहत देश के करीब 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम जारी किया और स्वास्थ्य तथा आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा,
1: 2002-03 की तुलना में अपने राज्य का बजट आयुष डिपार्टमेंट का 16 गुना बढ़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे लिए अगर प्राथमिकता की बात आएगी तो हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं। और आने वाले समय में, अब तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, अपने यहाँ टूरिज्म जबरदस्त बढ़ रहा है। ऐसे में टूरिज्म को लेकर के हमने अपने प्रत्येक टूरिज्म के सेक्टर में, खास करके टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जहां जहां है या हमारे धार्मिक पर्यटन के जहां केंद्र है, प्रत्येक

0: दर को शून्य स्तर तक लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित मोदी 25 विकसित भारत बढ़ता मध्यप्रदेश कॉन्क्लेव में कल उन्होंने ये बात कही। श्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के दिशा में कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है।
1: जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: और अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आज छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, इंदौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के छैगांव देवी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 50 विस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा और अनकही कहानियां थीम पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। धार में आयुर्वेद दिवस पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और आयुर्वेद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आगर मालवा पहुंची जनसेवा संकल्प यात्रा का विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। झाबुआ में कल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 सितंबर को ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन करेगा। डिंडौरी में बैगा, बाहुल्य, वनग्राम, पोंडी, ईश्वरपुर, बंगवार और वकीली डोला झामूल में स्वास्थ्य जांच और पोषण परामर्श शिविर आयोजित किए गए। मंडला के पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में उमंग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पन्ना जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत गतिविधि संचालित की जा रही है। गुना कलेक्टर ने कल ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। छतरपुर की खजुराहो में जन जल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ननौरा तालाब में सांसद खजुराहो विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत समन्वित कृषि विकास कार्यशाला में किसानों को खेती की जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

उगते सूरज की सुनहरी किरणें जब क्षितिज पर फैलती हैं तो आकाश का रंग एक नई उम्मीद से भर जाता है। पेड़ों के पत्तों से छनकर आती रोशनी और बहती हुई सुबह की ठंडी हवा मन को असीम शांति का एहसास करा रही हैं। सुबह की ये ताजगी हमें जीवन की एक नई शुरुआत का शुभ संदेश देती है। नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपके साथ रश्मि बजाज भराड़िया। आज 24 सितंबर 2026 की ये सुबह हम सबके लिए नई ऊर्जा लेकर आई है। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा हमें दिन भर सक्रिय और प्रसन्न रखती है। अगर मन में अटूट विश्वास हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता की दिशा तय करता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें और हर चुनौती का मुस्कुराहट के साथ सामना करें। आपकी ये नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपकी ये नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, दुखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं, हो दिन की शुरुआत ऐसी खुशियों से आपकी कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महफिल और आइए सुनते हैं सबसे पहले फिल्म जमीर से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में हम लेकर आते हैं आपके लिए उज्जैन के विकास से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें, और साथ ही आज के दिन क्या विशेष है इस बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक खबर से। उज्जैन जिले की महतपुर तहसील के ग्राम कासोन ने जल संरक्षण का एक नया मॉडल पेश किया है। इस गांव की आबादी लगभग 1482 है। यहां अब सप्ताह के सातों दिन लगभग 24 घंटे नल से पेयजल की सप्लाई शुरू हो गई है। कैसे, आइए बताते हैं। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन योजना को अपने अनुसार बदला और व्यर्थ बहते लगभग 70% पानी को बचाकर ये सफलता हासिल की है। लीकेज रोकने के लिए लगभग 4 माह तक काम किया। गाँव वालों ने पाइपलाइन सुधारी, लगभग 95 स्टैंड पोस्ट की मरम्मत की और तकरीबन 80 से अधिक लीकेज ठीक किए। ग्रामीणों ने खुद लगभग 70 से अधिक स्टैंड पोस्ट भी बनाए और तकरीबन 250 घरों के लोगों ने अपने खर्च से नलों में टोटियां भी लगाई और अब तकरीबन 100% ग्रामीणों को पानी मिल रहा है। इस प्रेरणादायक खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम पर्वत से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में अब समय है कार्यक्रम के उस भाग का जिसका नाम है समाचार पत्रों से, और इस भाग में हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन के समाचार पत्रों से आज की कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबरें। आइए आज के अखबारों की प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं। श्रोताओं, बैंक से जुड़े कामकाज को लेकर एक ज़रूरी खबर है। 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी। इसी के चलते इस रविवार 27 सितंबर को सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। दरअसल 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। इसके तुरंत बाद लगभग 3 दिन की हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की आशंका थी। आम लोगों के ज़रूरी काम ना रुकें, इसलिए रविवार को बैंक खुले रखने की मंजूरी दी गई है। ये हड़ताल लगभग 5 दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और पुरानी पेंशन जैसी मांगों को लेकर की जा रही है। इसलिए जनता से अपील की गई है कि अपनी सुविधा के अनुसार बैंक का काम समय रहते पूरा कर लें। अगली खबर सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के संबंध में है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत शिप्रा नदी पर बन रहे नए ब्रिजों का काम अब तेज गति से आगे बढ़ेगा। बारिश के कारण काम की गति थोड़ी कम हो गई थी। 30 सितंबर के बाद नदी में कोफर डैम बनने का काम शुरू होगा। योजना के मुताबिक कुल लगभग 21 ब्रिज बनाए जाने हैं। इनमें से लगभग 15 ब्रिज शिप्रा नदी पर बनेंगे। निर्माण से जुड़े विभाग का दावा है कि लालपुर, ओखलेश्वर और कमेण नाले पर बन रहे लगभग 3 ब्रिज इस साल दिसंबर के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे सिंहस्थ के दौरान शहर में आने वाले वाहन चालकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। खेल जगत से जुड़ी एक खबर भी अखबारों में है। महानंदा नगर स्पोर्ट्स एरिना में जिला स्तरीय बैडमिंटन चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और शासकीय माधव महाविद्यालय ने निभाई। इस प्रतियोगिता के माध्यम से संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया। इसमें अलग अलग वर्गों में कई उदीयमान खिलाड़ियों ने अपना कौशल दिखाया। खेल हमें हमेशा अनुशासन और समर्पण सिखाते हैं। ऐसे आयोजनों से स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने और राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने का एक अच्छा मंच मिलेगा। अगली खबर जो समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है वो है रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर प्रशासन की सजगता को लेकर है। सिंहस्थ 2028 के मद्देनज़र स्टेशन पर स्वच्छता, यात्री सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। निरीक्षण के दौरान रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे क्राउड होल्डिंग एरिया को भी देखा गया। यहां श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए। साथ ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 तक की सफाई व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भीड़ के समय अतिरिक्त संसाधन और स्टाफ मौजूद रहे ताकि बाहर से आने वाले किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। आस्था और परंपरा से जुड़ी एक विशेष खबर है। इस बार श्राद्ध पक्ष लगभग 15 दिन के बजाय 16 दिन का होगा। वर्ष 1966 के बाद अब वर्ष 2026 में ग्रहों की एक विशेष स्थिति बन रही है। महालय श्राद्ध का आरंभ 26 सितंबर से होगा और ये 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या तक चलेगा। पूर्णमासी से अमावस्या तक पितरों को धूप देने की ये परंपरा हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इस दौरान तर्पण में कुश का उपयोग अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि विधि विधान से पितरों का स्मरण करने से परिवार में सुख और शांति का वास होता है। धार्मिक उल्लास की एक और खबर शहर से आई है। वामन द्वादशी के अवसर पर 23 सितंबर को श्री वामन प्रकट उत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भगवान वामन देव की लगभग 1200 वर्ष पुरानी अति प्राचीन प्रतिमा का अभिषेक और पूजन किया गया। पूजन के बाद महाआरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ग्रामीण विकास को लेकर एक अच्छी खबर है। नीमा फाउंडेशन ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत धतरावदा के ग्राम लालपुर को गोद ले लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम के विकास को गति देना और जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत की सहमति से अब यहाँ कई योजनाबद्ध काम होंगे। इनमें स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास और स्वरोजगार से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे। अब बात महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आगामी सिंहस्थ को देखते हुए अवंतिका विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों के लिए लगभग
7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण हो रहा है। ये आयोजन 22 से 28 सितंबर तक परिसर में चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी और संवेदनशील बनाना है। सुरक्षाकर्मी केवल प्रहरी नहीं बल्कि श्रद्धालुओं से सीधे जुड़ने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनके व्यवहार, सेवा भाव और आपात स्थितियों से निपटने की दक्षता पर ध्यान दिया जा रहा है। तो श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों से बस इतना ही, और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में ये गीत है आया सावन झूम के, फिल्म से।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। कार्यक्रम है सुप्रभात उज्जैन और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। श्रोताओं, उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। हाल ही में सिंहस्थ सेवा दल की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये तय किया गया है कि प्रदेश भर के लगभग 15,000 शिक्षक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सभी शिक्षक भारत स्काउट एवं गाइड से जुड़े होंगे। इन शिक्षकों को लगभग 7 दिन का बेसिक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण की रूपरेखा जिले स्तर पर तैयार की जाएगी। इसके तहत शिक्षकों को सिंहस्थ से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जाएगी और प्रबंधन के कौशल सिखाए जाएंगे। शिक्षकों की ये भागीदारी मेले को सफल बनाने में बहुत अहम होगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है जसपाल सिंह और हेमलता ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको पुनः बता दें कि आज सुबह 10:15 पर होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें फोन लगाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0734-405-4191, 0734-405-4191। हमारी आज की चर्चा का विषय है गणपति विसर्जन विशेष उत्सव 10 दिन का, सीख उम्र भर की। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यों को सुरक्षित बनाने के लिए उज्जैन में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में जुटे इंजीनियर्स को जोखिम की पहचान कराना और सुरक्षित कार्य पद्धतियां सिखाई जा रही हैं। इसके लिए IIT मुंबई के प्रोफेसर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पहले दिन मेला कार्यालय में ट्रेनिंग दी गई और फिर फील्ड में ले जाकर प्रायोगिक जानकारी भी दी गई। नवाचारों के क्रम में इंजीनियर्स के एक बैच के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ 2028 के अंतर्गत हो रहे विभिन्न निर्माण और अधोसंरचना विकास कार्यों में सुरक्षा मानकों को लागू करना है। ये ट्रेनिंग केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि साइट्स पर जाकर भी सिखाई जा रही है। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म कुर्बानी से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने।

श्रोताओं, आज 24 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध और साहसी क्रांतिकारी महिला भिकाजी कामा का जन्म हुआ था। उन्होंने विदेश में रहकर भारत की आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष किया और पूरी दुनिया के सामने भारतीय ध्वज फहराकर सच्ची देशभक्ति की मिसाल कायम की थी। उनका ये प्रेरणादायक जीवन हर भारतीय के हृदय में गर्व की भावना जगाता है। इसके साथ ही आज प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ का भी जन्मदिन है। मोहिंदर अमरनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना बहुत अहम योगदान दिया है और अपने खेल से कई महत्वपूर्ण मैचों में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। खेल के मैदान पर उनका ये प्रदर्शन आज भी युवा खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित करता है। इन दोनों महान व्यक्तित्वों को हम उनके जन्मदिन पर नमन करते हुए याद करते हैं। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म अनोखी अदा से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, गीत संगीत और इन जरूरी जानकारियों के साथ हमारा आज का सुप्रभात उज्जैन का ये सुहाना सफर अब यहीं थमता है। अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन से अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FMXO 2.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
9: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varanagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bagged silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls.

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है शहीद बूटा सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से राजकुमार और छिंदवाड़ा से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसूर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस

प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण, जिसे अब आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर भी न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम उज्जैनी RJ का।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस समय आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं और क्या उस फीलिंग्स से जुड़ा हुआ कोई गीत आपके जहन में है, या किसी फिल्म के नायक नायिका या किसी किरदार की जगह आप अपने आप को देख रहे हैं? आप भी सोचेंगे मैं सुबह सुबह ये सारी क्या बातें लेकर बैठ गई। हिंदी सिनेमा केवल रुपहले पर्दे पर चलने वाली कुछ तस्वीरें नहीं हैं दोस्तों, ये हमारे समाज का, हमारी अनकही भावनाओं का और हमारे रोज़मर्रा के जीवन का सबसे सच्चा आईना है। आज की इस खूबसूरत और सलोनी सुबह को हम यादों के कुछ नए पन्नों के साथ और भी ख़ास बनाने वाले हैं, क्योंकि आज है बॉलीवुड डे। तो चलिए मेरे साथ पुरानी यादों के झरोखे से हिंदी सिनेमा के इस अद्भुत सफ़र का आनंद लेते हैं। और इस सुहाने सफ़र में मैं हूँ वही आपकी हम सफ़र, आपकी अपनी आरजे रश्मि बजाज, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन पर अपना सबसे चहेता कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड के शानदार सफ़र को इस खूबसूरत गीत के साथ जो हमें याद दिलाता है ब्लैक एंड वाइट ज़माने की।

तो श्रोताओं, शुरू कर दें हमारे सफर को 55 से 60 और 70 के उस सुनहरे दौर से जिसे हिंदी सिनेमा का असली स्वर्ण युग कहा जाता है। मूक फिल्म, बगैर गीतों की फिल्म के बाद ब्लैक एंड वाइट का वो सादगी भरा दौर जिसने हमें दी श्री 420, मदर इंडिया और प्यासा जैसी कई शानदार फिल्में। 60 से 70 के दशक में धीरे धीरे रंगों की ओर बढ़ता बॉलीवुड, विंटेज वाला बॉलीवुड, अपनी एक अलग ही गरिमा समेटे हुए था। उस दौर की कहानियों में आदर्शवाद और रिश्तों की पवित्रता का अनूठा संगम देखने को मिलता था। ये वो दशक था जिसने हमें ऐसे नायक और नायिकाएं दिए जो पर्दे पर किसी फरिश्ते की तरह नहीं बल्कि हमारे अपने परिवार के किसी बेहद संस्कारी और आदर्श सदस्य की तरह लगते थे। मुगले आजम, गाइड, पड़ोसन, आराधना से लेकर आनंद, पाकिजा और बॉबी तक इस दौर की फिल्में आज भी ताजगी का एहसास कराती हैं। तो चलिए इस दौर को सुनते हैं इस गाने के जरिए।

दोस्तों सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कदम रखते हैं 70 से 80 के रोमांचक और उथल पुथल भरे दशक में। ये वो दौर था जब हमारा समाज तेज़ी से बदल रहा था और सिनेमा उन सामाजिक बदलावों की कहानी बहुत ही मुखरता से कह रहा था। इसी समय एंग्री यंग मैन का उदय हुआ, जिसने आम आदमी की हताशा, अव्यवस्था के प्रति गुस्से और न्याय की पुकार को पर्दे पर एक नई आवाज़ दी। सिनेमा घरों में तालियों की गूंज इस बात का सबूत थी कि दर्शक पर्दे पर अपना ही अक्स देख रहे थे। लेकिन इस

और मैं सिर्फ बगावत नहीं थी। एक तरफ एक्शन अपनी चरम सीमा पर था तो दूसरी तरफ रोमांस ने एक नया स्टाइलिश और बिंदास अंदाज ओढ़ लिया था। बेल बॉटम और बड़े चश्मों के उस नए फैशन के बीच प्रेम को जताने का तरीका थोड़ा चुलबुला हो गया था। अमर अकबर एंथोनी, डॉन, दीवार जैसी रोमांचक फिल्में जोर पकड़ रही थीं, वहीं कर्ज, एक दूजे के लिए, तेजाब, हीरो जैसी रोमांटिक फिल्मों ने भी अपना जलवा दिखाया। तो चलिए देखते हैं उस जलवे को इस गीत के जरिए।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने सेट किया है आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, अपनी आरजे रश्मि बजाज के साथ। अब बात करते हैं 80 से 90 के उस बेहद खास दौर की, जिसने हम सबको असल में प्रेम और परिवार के सबसे मधुर पहलू का एहसास कराया। नायक नायिका का प्यार में संघर्ष और बगावत के साथ ही पारिवारिक मूल्यों पर आधारित फिल्मों का

अगर हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम साथ साथ हैं, कुछ कुछ होता है और बॉर्डर जैसी एक से बढ़कर एक फिल्में हमें इस दशक ने दी। चलिए इस दशक को सेलिब्रेट करते हैं उस दशक की सबसे हिट फिल्म के इस गीत के साथ।

दोस्तों, जैसे ही हमने 21वीं सदी की दहलीज पर कदम रखा, साल 2000 से 2015 के बीच बॉलीवुड ने खुद को एक बिल्कुल नए सांचे में ढालना शुरू कर दिया। ये मल्टीप्लेक्स का दौर था जिसने कहानी कहने के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया। अब कहानियों का दायरा सिर्फ नायक नायिका के मिलन या जुदाई तक सीमित नहीं रहा। इसमें दोस्तों की बेपरवाह टोलियां, युवाओं के अपने सपनों को लेकर आसमान छूने की चाहत और आधुनिक रिश्तों की बारीक उलझने शामिल हो गईं। रिश्ते अब ज़्यादा व्यावहारिक और जीवन के करीब दिखने लगे थे। हमारी फिल्में तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध हो गईं और कहानियों ने एक वैश्विक रूप ले लिया, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा पूरी तरह से हिंदुस्तानी ही रही। जहां एक ओर देवदास, दिल चाहता है, मुन्ना भाई, MBBS, कल होना हो और जब वी मेट जैसी मस्ती भरे प्यार की फिल्में थीं, तो दूसरी ओर गंभीर विषय लिए लगान, तारे ज़मीन पर, स्वदेश, चक दे इंडिया, रंग

और दोस्तों, अब अंत में हम आ पहुंचे हैं 2015 से लेकर आज तक के उस बिल्कुल नए और ताज़ा तरीन दौर में, जहां सिनेमा यथार्थ और हमारे जीवन के सबसे ज़्यादा करीब आ गया है। ये वो समय है जहां कहानियों का कैनवास महानगरों से निकलकर छोटे शहरों की तंग गलियों और वहां की सौंधी मिट्टी तक पहुंच गया है। आज का नायक कोई सब कुछ कर सकने वाला महामानव, कोई सुपरहीरो नहीं, वह हम और आप जैसा ही एक साधारण व्यक्ति है जो अपनी कमियों, अपने डर और अपने दैनिक संघर्षों से जूझ रहा है। आज के सिनेमा ने मानसिक स्वास्थ्य और समाज के उन अनकहे विषयों पर बहुत ही संवेदनशीलता से बात करनी शुरू कर दी है जिन पर पहले बात करने से बचा जाता था। पीके, पिंक, हिंदी मीडियम, ट्वेल्थ फेल, दम लगा के हईशा, घोंसला का घोंसला जैसी फिल्में एक आम इंसान की कहानी कह रही हैं, तो वहीं कुछ भव्य सिनेमाई प्रभाव वाली फिल्में भी देखने को मिली, जैसे ब्रह्मास्त्र, एनिमल, धुरंधर और साथ ही दंगल, गंगूबाई काठियावाड़ी, शेरशाह, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कुछ वास्तविक घटनाक्रम पर आधारित फिल्मों ने आम इंसान के जहन पर गहरा असर डाला। और दोस्तों, आधुनिक सिनेमाई युग का नवीनतम रूप हम आजकल वेब सीरीज के रूप में देख रहे हैं, जिसका युवाओं में एक अलग ही क्रेज है। चलिए इस युग को सेलिब्रेट करते हैं उस फिल्म के गीत के साथ जिसका नाम शायद हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है।

दोस्तों, उम्मीद है बॉलीवुड डे का ये सुहाना और यादों भरा सफर आपको पसंद आया होगा। इन प्यारी सी धुनों के साथ योर आरजे रश्मि बजाज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम उज्जैनी आरजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब समय है नए गीतों के कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं अपना एकदम एनर्जेटिक प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रश्मि। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आप फोन लगाकर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकेंगे। आज का हमारा विषय है गणपति विसर्जन विशेष, उत्सव 10 का, सीख उम्र भर की। हमारा फोन नंबर है 07-34-405-4191, 07-34-405-4191। तो चलिए आज के इस सुहाने दिन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी प्लेलिस्ट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी इमोशनल तो कभी मस्ती से भरी। बचपन की वो यादें और मासूम शरारतें जिन्हें हम अक्सर दिल की अलमारी में महफूज रखते हैं। फिल्म हेलीकॉप्टर ईला का ये गीत उन्हीं यादों के पन्नों को पलटता है। स्वानंद किरकिरे के लिखे इन नॉस्टैल्जिक बोलों को अमित त्रिवेदी ने एक अपबीट संगीत से सजाया है। पलोमी घोष की खनकती आवाज में आइए हम भी खोलते हैं ये यादों की अलमारी।

0: तो साथियों, यादों के सफर के बाद अब बारी है जिंदगी को खुलकर सेलिब्रेट करने की। स्पेन की खूबसूरत सड़कों, दोस्तों के साथ मस्ती और फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाली वाइब के साथ आ रहा है हमारा अगला गीत। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का ये शानदार ट्रैक आपको जिंदगी के हर पल को जीने का मैसेज देता है। शंकर एहसान लॉय के बेहतरीन संगीत और जावेद अख्तर के शब्दों का कमाल, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल और मारिया डेल की मस्ती भरी आवाज में झूमने के लिए तैयार हो जाइए।
1: ना मैं समझा, ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनियोरी।

तो दोस्तों के साथ इस डांस के बाद चलिए माहौल में थोड़ी सी रोमानियत घोलते हैं। जब प्यार का पहला एहसास दस्तक देता है तो दुनिया एक खूबसूरत ख्वाब जैसी लगने लगती है। फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत उसी मासूमियत और इजहार की बेहद प्यारी तस्वीर पेश करता है। जावेद अख्तर के लिखे गहरे जज्बातों को अनु मलिक ने अपने मेलोडियस संगीत में बड़ी खूबसूरती से पिरोया है। सोनू निगम और अलका याग्निक की मखमली आवाज़ों में आइए इस क्लासिक रोमांटिक एहसास को महसूस करते हैं।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: तो दोस्तों, रिफ्यूजी के इस रोमांटिक एहसास के बाद अब वक्त है बॉलीवुड बीट्स के मीटर को एक बार फिर सीधा पार्टी मोड पर सेट करने का। चलिए चलते हैं रेट्रो डिस्को के उस सुनहरे दौर में जिसे एक नए और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश किया गया है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये ट्रैक हर डांस फ्लोर की जान है। अन्विता दत्त के कैची बोल और विशाल शेखर का सुपर एनर्जेटिक म्यूजिक आपको बैठने नहीं देगा। नाजिया हसन की क्लासिक आवाज के साथ बेनी दयाल और सुनिधि चौहान के इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय कीजिए।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, आकाशवाणी उज्जैन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। बढ़ते हैं आगे। प्यार की इस इंटेंसिटी के बाद अब माहौल में एक ऐसा धमाका होने वाला है जो आपके अंदर की सारी छुपी हुई एनर्जी बाहर निकाल लाएगा। अगर आप अब तक डांस करने से खुद को रोके हुए थे तो अब ऐसा करना एकदम नामुमकिन है। फिल्म धड़क का ये ट्रैक एक फुल ऑन देसी सेलिब्रेशन है। अमिताभ भट्टाचार्य के मस्त मौला बोलों को अजय अतुल ने अपनी हाई ऑक्टेन बीट्स और म्यूजिकल अरेंजमेंट से सजाया है। अजय अतुल की ही बेखौफ आवाज़ में चलिए हम भी इस देसी बीट पर थिरकते हैं। वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए और सुनिए ये शानदार ट्रैक।

इस जबरदस्त एनर्जी के बाद अब बारी है एक ताजा तरीन और इंटेंस रोमांटिक ट्रैक की। जब किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो जाए तो उसके बिना एक पल भी गुजारना बहुत मुश्किल लगने लगता है। फिल्म बागी 4 का ये गीत इसी दीवानगी और तड़प को अपनी आवाज देता है। कुमार के लिखे शब्दों को सलामत आली मटोई, जोश ब्रार और आगाज ने एक दमदार संगीत से सजाया है। जोश ब्रार और परंपरा टंडन की दिलकश आवाज में प्यार के इस गहरे एहसास को महसूस कीजिए।

तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स से इजाजत। लेकिन लेकिन लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बस कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे लेकर सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें फोन लगाकर आप अपनी बात हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकेंगे। समय होगा 10:15। तब तक जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंहस्थ संवाद के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति अमृत घट बरसे का 13वां अंक।
1: प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 13वीं कड़ी। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना अनवार अहमद खान की।

नमस्कार। नश्वरता में अमरत्व की खोज का महापर्व सिंहस्थ कुछ ही दिनों में पूर्णता प्राप्त कर लेगा। सिंहस्थ पर केंद्रित हमारी ये रेडियो श्रृंखला भी आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उज्जैनी की गौरवशाली परंपराओं और सिंहस्थ की मूल भावना को समझने का प्रयास किया। आज हम अपनी संपूर्ण यात्रा का स्मरण करेंगे ताकि ये सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहे।

0: 22 अप्रैल को जब सिंहस्थ आरंभ हुआ था तब सिंह राशि पर बृहस्पति और मेष राशि पर सूर्य का आगमन हुआ था। सिंहस्थ के संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण की एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार अमृत की खोज में देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उज्जैनी की परंपराओं के जानकार डॉक्टर शिवचरण चौरसिया।
1: इस कथा के अनुसार देव दानवों का सागर मंथन हुआ और उनने मंथन जब किया तो उसमें से 14 रत्न निकले।
0: इन 14 रत्नों में एक अमृत घट भी था। देवता दानवों के साथ अमृत नहीं बांटना चाहते थे। देवराज इंद्र के संकेत पर उनके पुत्र जयंत अमृत घट लेकर भागे। देव और दानवों में 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान अमृत घट से कुछ बूंदें छलककर 4 स्थानों पर गिरी। उज्जैनी की संस्कृति और परंपराओं पर कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित।
2: हरिद्वार के गंगा में, प्रयाग के संगम पर, नासिक की गोदावरी में और उज्जैन के शिप्रा में, ये जो चारों स्थान हैं ये अमृतमय हो गए।
0: उज्जैन के प्रख्यात पंचांगकर्ता और ज्योतिषविद पंडित आनंद शंकर व्यास।
3: अमृत बिंदु का पतन जिन स्थितियों में हुआ था उन स्थिति की जब पुनरावृत्ति होती है तो वो तीर्थ अमृतमय हो जाता है, मोक्ष देने वाला हो जाता है।
4: अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे।
0: सिंहस्थ 12 वर्षों के अंतराल के बाद होता है क्योंकि इस दुर्लभ ज्योतिषी योग की पुनरावृत्ति इतने ही वर्षों के बाद होती है। काल गणना की ऐसी अनोखी परंपरा भारत में ही मिलती है और उज्जैन प्राचीन काल से काल गणना की इस परंपरा का केंद्र रहा है। काल की भारतीय अवधारणा पश्चिम से पूर्णतः भिन्न है। आधुनिक काल के प्रख्यात ब्रह्मांड विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने समय का संक्षिप्त इतिहास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि सृष्टि और समय की उत्पत्ति एक साथ हुई, किंतु भारत ने कहा कि काल सदैव विद्यमान रहता है। उज्जैनी की परंपराओं पर केंद्रित पुस्तक अवधूत की सहलेखिका नेहा तिवारी।
5: जब कुछ भी नहीं था तब परम शून्य था, जिसे कि हम महाचैतन्य अवस्था कहते हैं शिव की,
0: जिसे पश्चिमी वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं, वो भारतीय दृष्टि में स्फोट है। स्फोट के पूर्व परा प्रकृति में भी काल अर्थात समय सनातन क्षण के रूप में उपस्थित है। कालांतर में इस परा प्रकृति में एक स्फोट के साथ अपरा प्रकृति का निर्माण होता है।
6: जो महाकाल हैं वो गतिमान होते हैं अपरा प्रकृति में,
0: चिंतक एवं लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी।
6: और भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में उनकी गति से काल के 3 रूप भौतिक सृष्टि में बन जाते हैं।
0: काल के प्रारंभ को लेकर पश्चिमी अवधारणा भले ही भारत से भिन्न हो, सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में दोनों दृष्टिकोण एक से प्रतीत होते हैं। अवधूत के सहलेखक संगीत वर्मा।
7: स्टीफन हॉकिंस कहते हैं थ्योरी ऑफ बिग बैंग, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, एक बिंदु है, उस बिंदु के प्रकट होते ही एनर्जी प्रकट होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। उस शक्ति के 2 फॉर्म्स हैं, लाइट है और साउंड है। लाइट और साउंड के वेव इंटरैक्शन से मैटर पैदा होता है, मैटर से सृष्टि बनती है और सृष्टि अपने पूरे विस्तार में आती है। यहाँ तक देखें तो यह बात बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, क्योंकि यही बात भारत की आगमिक यानी तांत्रिक परंपराएं कहती रही हैं, यही बात भारत की पौराणिक परंपराएं कहती हैं कि जब शिव पुराण में या स्कंद पुराण में स्कंद बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में अज्ञात के कारण सृजन की इच्छा से शक्ति शिव से पृथक हुई।
0: पश्चिम ने इसे प्रसारीय ब्रह्मांड की संज्ञा दी। इसके अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार होगा और इस प्रकार एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। बाद में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा महासंकुचन की अवधारणा दी गई। इसमें उन्होंने बताया कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार थम जाएगा और वो पुनः संकुचित होगा। संकुचित होते होते एक दिन ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा।
7: विज्ञान ये मान बैठा है अब, जो भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहती है कि मुड़ करके ये सारा ब्रह्मांड उस ग्रेविटेशनल पुल के कारण वापस उसी बिंदु में पुनः एक बार समाहित हो जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के ये

0: इतना निकट है कि थ्योरी ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स को जब आप गीता के तीसरे अध्याय में अर्जुन और कृष्ण के संवाद में देखते हैं, तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह सारी सृष्टि मुझसे प्रकट होती है और विस्तार पाती है, और ब्रह्मा की रात्रि आने पर यह सारी सृष्टि मुझमें और मैं स्वयं में लय हो जाता हूँ।
1: काल और महाकाल की नगरी उज्जैनी को सूर्य के ठीक नीचे स्थित होने की विशेषता प्राप्त है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये नगरी एक समय विश्व का ग्रीनविच हुआ करती थी।
2: कालगणना की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति का भी एक मानदंड है। उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ लंका से सुमेरु तक जाने वाली रेखा, जिसको शून्य रेखांश कहते हैं, कर्क रेखा को उज्जैन में मिलती है। तो ये बिंदु वास्तव में ऐसा माना जाता है कि संभवतः वो स्थान महाकाल मंदिर ही हो या महाकाल का शिवलिंग ही हो। कई स्थान इस तरह से इसलिए बनाए जाते थे कि पूजा के स्थान होने से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता था, तो हमेशा वो स्थायी रहे। तो इस वजह से शंकु के रूप में महाकाल यहाँ विराजमान है।
1: वराहमिहिर भारतीय ज्योतिष में एक ऐसा नाम है जिनके बिना ज्योतिष पूर्ण नहीं होता। उन्होंने भी काल गणना के केंद्र के रूप में उज्जैनी को ही चुना था। वराहमिहिर ने न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण के नियम से भी आगे की व्याख्या कर दी थी। पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मोहन गुप्त,
3: वराहमिहिर ने बड़ा व्यापक सिद्धांत किया। आज लोग तो सिर्फ कहते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खिंचती चली जाती है। वराहमिहिर ने कहा पृथ्वी क्यों, दीपक की ज्योति तो ऊपर जाती है। आशय यह हुआ कि कोई भी वस्तु अपने मूल की ओर जाती है। अगर पार्थिव वस्तु है तो पृथ्वी की ओर जाएगी, अगर आग्नेय वस्तु है तो अग्नि तो आकाश में जाएगी, वायु वस्तु है तो ऊपर जाएगी। फ्लेम आप उल्टा लटका दो तो फ्लेम ऊपर जाती। इतना व्यापक सिद्धांत वराहमिहिर ने दिया।
1: उज्जैनी से की गई काल गणना के आधार पर ही भास्कराचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की थी।
3: भास्कर ने सिद्धांत स्वरूप में तो बहुत साफ कह दिया 12वीं सदी में कि आकर्ष्ट शक्तिश्च मही, साफ साफ पृथ्वी में आकर्ष शक्ति है, तया यत आकर्ष्यते तत् पतति भाति, वो पृथ्वी जिसको आकर्षित करती है वो गिरती हुई। अब कोई प्रश्न उठाया भाई पृथ्वी क्यों नहीं गिरती, तो उन्होंने कहा चारों तरफ आकर्षण है, समय समन्तात् क्व पतत्वम खे, चारों तरफ एक सा है तो पृथ्वी कहाँ गिरेगी, यानी लटकी रहेगी। स्पष्ट कंसेप्ट था।
1: एक और पौराणिक आख्यानों में जहां उज्जैनी की गिनती मोक्ष प्रदान करने वाली सप्तपुरियों में होती है, वहीं कालिदास ने इसे स्वर्ग का चमकता खंड कहा है। सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान उज्जैन से संबद्ध डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा,
4: प्राप्यावंती उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोदिष्टा अनुसर पुरीम श्री विशालाम विशालाम स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कांतिमत खंडमेकम। तो स्वर्ग का ऐसा कांतिमत खंड, ऐसा चमकीला टुकड़ा उज्जैनी है।
1: महाकवि बाण भट्ट ने भी इस नगरी के वैभव का अभूतपूर्व वर्णन किया है।
4: महाकवि बाण भट्ट कह रहे हैं, अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता प्रसव भूमिरिव कृतयुगस्य। वे ये कह रहे हैं कि यह जो उज्जैनी है यह सकल त्रिभुवन ललाम भूता है, अर्थात तीनों लोकों में इससे सुंदर कोई भूमि नहीं है।
1: विक्रम संवत प्रवर्तक न्याय एवं शौर्य के प्रतीक महाराजा विक्रमादित्य की ये राजधानी रही है। महाभारत काल में श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने उज्जैनी में ही स्थित सांदीपनी आश्रम से शिक्षा प्राप्त की थी। महाकवि भास ने उदयन और वासव दत्ता की प्रणय गाथा के कथानक पर लिखे नाटक स्वप्न वासव दत्ता और प्रतिज्ञा यौगंध रायण के लिए इसी भूमि को चुना था। शूद्रक ने भी अपने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम का ताना बाना यहीं बुना। ज्योतिष, गणित, खगोल, साहित्य और कई प्राचीन परंपराओं की इस नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ के अवसर पर कई साधु संत एकत्रित हुए हैं। मोक्षदायिनी क्षिप्रा में पवित्र स्नान और साधु संतों के सानिध्य से ये शारीरिक और आत्मिक शुचिता का पर्व बन जाता है। आइए सिंहस्थ के इस पुनीत अवसर पर अपने समस्त मनोविकारों को प्रवाहित कर संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम का संकल्प लें। ज्ञान रूपी ये अमृत हमें निश्चित ही अमरत्व प्रदान करेगा।

0: अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।
1: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
2: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
3: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
2: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
3: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
2: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
3: चौराहे पर हमेशा जेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
2: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
4: ए भाई जरा देख के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सिंहस्थ संवाद के अंतर्गत आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति अमृत घटबर से का 13वां अंक। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि बजाज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में हमारे घरों और मोहल्लों में जो उल्लास था, ढोल नगाड़ों की जो गूंज और आरती की मधुर ध्वनियां थीं, आज वो एक मीठी सी भावुकता में बदल रही हैं। कल अनंत चतुर्दशी है, हमारे प्यारे बप्पा की विदाई का दिन। मन थोड़ा भारी ज़रूर है, लेकिन ये विदाई नहीं बल्कि एक वादा है कि अगले बरस तू जल्दी आ। भगवान गणेश सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं विराजते, बल्कि अपने स्वरूप से हमें जीवन जीने की कला भी सिखा जाते हैं। इसीलिए आज का हमारा विषय है गणपति विसर्जन विशेष, उत्सव 10 दिन का, सीख उम्र भर की। आपने इन 10 दिनों में बप्पा की किस सीख को अपने जीवन में उतारा, ये आज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए और साझा कीजिए अपने अनुभव। हमारा फ़ोन नंबर है 07-34-405-4191, 07-34-405-4191। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे उनके विचार क्या हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी, योगेश जांगरे, मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: बढ़िया है। और अगला रिकॉर्ड फिर से बनाने की लगता है आपकी तैयारी, जैसा हम जानते हैं कि आपने फोन इन में फोन लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया है।
1: जी।
0: तो आज का विषय आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बप्पा की विदाई को लेकर के, और इन 10 दिनों में जो उत्साह और उल्लास के साथ हमने ये त्योहार मनाया है, इससे आपने क्या सीखा? जीवन की कौन सी सीख है जो बप्पा हमें जाते जाते देकर जा रहे हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी सीख तो मेरे हिसाब से ये है

0: कि जो हम आज है वो हम कल नहीं रहेंगे, या तो फिर जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही।
0: जीवन में इसी तरह ना तो सुख का कोई एकदम परमानेंट साथ होता है, ना तो दुखों का परमानेंट

0: देता है।
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
1: विसर्जन के बारे में कुछ बातें और कहना चाहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल योगेश,
1: क्योंकि देखिए विसर्जन का समय जैसे हम कई सालों से न्यूज में देखते आए हैं, कई प्रकार की दुर्घटनाओं का एक हो जाता है
0: जी।
1: तो हम सभी से गुजारिश करेंगे कि काफी सतर्कता के साथ, सूझबूझ के साथ उस कार्य को करें, क्योंकि कोई भी प्रकार की जन हानि हमारे त्योहार को पूरी तरह से फीका कर सकता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा योगेश जी, ये बात आपने आकाशवाणी के मंच से जो यहाँ पर आपने सभी से ये जो आग्रह किया है, ये वाकई में हम भी कहना चाहेंगे कि जब भी आप विसर्जन के लिए जाएं तो बहुत गहराई में नदी नालों में ना उतरें। वैसे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता है, फिर भी हमारी अपनी सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चों को और महिलाओं को विशेष रूप से हम दूर रखें जो भी हमारे जल स्रोत हैं उनसे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फ़ोन लगाने के लिए योगेश जी। श्रोताओं, निश्चित ही कल विसर्जन का दिन है, आप सभी बहुत उत्साह में होंगे, और लेकिन उत्साह के साथ सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप विसर्जन के लिए जाएं तो समस्त सावधानियों को ज़रूर बरतें। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम के गीतों का सफ़र भी।

0: श्रोताओं, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उन्होंने बप्पा से क्या सीखा। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं गांव डेर तहसील जिला पाटन गुजरात रहता हूँ, अहमदाबाद से आपका नियमित श्रोता है, धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: धीरज जी, आप बात कर रहे हैं पाटन गुजरात से, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ और आकाशवाणी उज्जैन परिवार और सभी श्रोताओं और आप भी अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और धीरज जी, आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि कल गणपति विसर्जन का दिन आ गया है और ये 10 दिन जो हमने इतने उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमने बप्पा से या इन त्योहारों को मनाने से इन 10 दिनों में हमने क्या सीखा।
1: हमें बहुत कुछ सीख दे देते हैं गणपति बप्पा। जैसे देखा जाए तो गणपति विघ्न हटता है, कोई भी अगर हम शुभ कार्य करने जाते हैं तो कोई विघ्न न डाले, यही हम पहली सीखे। और देखा जाए तो स्वच्छता के बारे में भी गणपति दादा के पर्व में हमने बहुत कुछ सीखा है, कहीं किसी ने कचरा डाला है तो डस्टबिन में डाला है, और हो सके इतनी स्वच्छता यानी भक्तजन ने यानी दिखाई है तो, और देखा जाए तो मिट्टी की कई जगह पर मिट्टी भी गणपति की थी और कई जगह पर अच्छे अलग पंडाल से गणपति विसर्जन भी किया, अभी कई लोग बाकी भी है तो कई सीखे लिए सुविचार भी हमें इस प्रसंग से मिलते हैं, यानी अच्छे अच्छे कार्य करने का गणपति बापा का जो हमको जो यानी संदेश है हम सभी को बांटते हैं, तो हमें ये जो पर्व है बहुत कुछ सीखा जाता है दीदी, और ये पर्व से बहुत हंसी खुशी का माहौल रहता है। और अभी 15-16 दिन के बाद आएगी नवरात्रि, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छी यानी प्रेरणात्मक हमको मैसेज मिलेगा दीदी।
0: बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि बप्पा के विसर्जन के साथ साथ जो एक मन में थोड़ा हम उदासी होती है कि 10 दिन इतना उत्साह था और अब बप्पा जा रहे हैं, लेकिन तैयारियां अगले त्यौहार की शुरू हो जाती हैं। ये हमारे भारत देश की खूबसूरती है कि हम अगले त्योहारों को फिर से मनाने के लिए पूरे उमंग और उत्साह के साथ तैयार हो रहे हैं। दुर्गा जी हाँ, दुर्गोत्सव हमारा बिल्कुल हमारे नज़दीक है, तो उसकी तैयारियाँ भी अब बिल्कुल जोरों शोरों से करने का समय आ गया है।
1: और मैं आप सभी को हमारे गुजरात के नवरात्रि प्रसंग पर दानिया खेलने का आमंत्रण देता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, जब हम बप्पा की सुंदर मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं ना, तो वो मिट्टी वापस प्रकृति में ही मिल जाती है, लेकिन इन 10 दिनों की भक्ति, सकारात्मक ऊर्जा और अपनों का जो साथ हमें मिलता है, वो हमेशा हमारे मन के मंदिर में स्थापित हो जाता है। मूर्ति भले ही जल में घुल जाए, लेकिन आस्था कभी नहीं घुलती। आइए इसी आत्मीय भाव के साथ सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, हमारे अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं गणपति जी के इन 10 दिनों के उत्सव में उन्होंने क्या सीख ली। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते रश्मि जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछवाड़ा तहसील नागपुर जिला उज्जैन से।
0: नमस्कार नमस्कार प्रेम सिंह जी, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे हो?
0: हम लोग सब बहुत अच्छे हैं प्रेम सिंह जी, और आपकी आवाज़ सुनकर और भी प्रसन्नता हो गई है। और आपकी आवाज़ ने तो इन 10 दिनों में कई जगह भजनों से अपना जादू बिखेरा होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक भजन गायक हैं।
1: जी बिल्कुल, हमारे अभी 10 दिन तो रेगुलर भजन रहे हैं उसमें, और अभी आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेंगे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज का विषय हमारा ये है कि विसर्जन अब कल होने वाला है, लेकिन ये 10 दिन हमने बड़े उल्लास के साथ मनाए हैं। कई कार्यक्रम हुए होंगे, कई मोहल्लों में कई तरह की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा और ये कार्यक्रम किस तरह से हमें आपस में जोड़ते हैं और क्या सीख मिलती है हमें?
1: जी, इस कार्यक्रम में तो मतलब ये कि भक्ति भाव से तो पूरा शराब और रहता है पूरा हमारा माहौल, और जब एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है, और फसल आती है ना, और फसल के साथ जब ये ऐसे त्योहार आते हैं तो इनका उत्साह डबल हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, इससे ऐसा भक्ति द्वारा भक्ति का मार्ग भी चुन हो जाते हैं लोग, और काम भी होते रहता है, और प्रभु के द्वारा जो भी मिलता है, खुशी मिलती है, दुख मिलता है, सभी मतलब खुशी खुशी स्वीकार करते हैं।
0: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सुख है या दुख है, सब ईश्वर की देन है, थोड़ा संयम रख के और उसको भी सहर्ष स्वीकार किया जाए, दुख को भी, तो समय के साथ वो भी गुजर ही जाएगा। आखिर बप्पा की कृपा होगी, तो बप्पा तो बड़े बड़े विघ्नों के हर्ता हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए प्रेम सिंह जी कि इन 10 दिनों में क्या उत्सव मनाए आपके शहर में, किस तरह से मनाया गया ये त्योहार?
1: इसमें मतलब भजन के प्रोग्राम भी हुए और कुछ नृत्य भी हुए, अलग अलग प्रस्तुति सभी ने अपने अपने स्तर पर मतलब लोगों ने, कलाकारों ने दी, यहाँ पर
0: कलाकारों ने भी दी और बच्चों की भी कुछ प्रतियोगिताएं हुई होंगी, अगर तो साझा कीजिए हमारे साथ।
1: अभी कृष्ण जन्माष्टमी गया ना, उस पर भी काफी उत्साह था, मटकी फोड़ने का भी कार्यक्रम कई जगह पे हुआ, गणेश में मतलब कुछ लोगों ने भक्ति के साथ अपने गणेश वंदना भी की, गणेश जी की कहाँ पर कहानियां भी सुनाई कुछ लोगों ने, और मतलब जितने भी भक्ति भाव से जो कार्यक्रम हुए ना, मतलब रेगुलर चलते रहे।
0: अरे वाह, ये सारे जो कार्यक्रम हैं, हमारी आजकल की जो नई पीढ़ी है, जब वो बहुत ही उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लेती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी परंपराओं से जुड़ते हैं बच्चे आज के। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रेम सिंह जी आपसे बात करके। आकाशवाणी में उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार। श्रोताओं, कितनी अच्छी बात है ना कि जब छोटे छोटे बच्चे भी हम देखते हैं कि पांडालों में दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें भाग ले रहे हैं, और इन सब से हमें ये देखने को मिलता है कि उन्हें परंपराओं से जुड़ने का, हमारी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलिए हमारे अगले कॉलर से बात करते हैं, वो हमारे साथ लाइन पर हमारे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय देंगे, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं सभी जितने भी दर्शक सुनने वाले हैं उनको गणेश उत्सव का जो त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है वो बड़ी सबको शुभकामनाएं, और कहता हूँ कि गणपति बाबा मोरिया और अगले वर्ष तू जल्दी आ और अच्छी तरह से सबको संपत्ति दे, यही मेरा विचार है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी शुभकामनाएं आकाशवाणी उज्जैन के इस मंच से दी हमारे सभी श्रोताओं को। और आज हमारा विषय भी यही है कि गणपति विसर्जन जो है वो तो हो रहा है, लेकिन बप्पा के जाते जाते बप्पा हमें क्या सीख देकर जा रहे हैं, बप्पा के जाने से हमारे मन में जो भाव है उसमें आपको क्या लगता है, क्या विसर्जित होना चाहिए और हमें उनसे क्या अर्जन करना चाहिए, क्या उनसे हमें पाना चाहिए?
1: इस प्रकार से जो भी वार त्योहार मनाया जाते सुख और संपत्ति के जो अपने घर में जो कुछ भी शुभकामनाएं होती है तो गणपति जी महाराज का पहले आवागमन करते हैं। उसी प्रकार में हर बार कहता हूँ कि ये प्रकार ये जो त्योहार मनाए जाते अच्छी तरह से मनाए जाए और जितने भी सुनने वाले हैं कि वो अच्छी भावना लेके चलें और गणपति जी को जो विसर्जन होता है उसको पूरे जो मिट्टी के साथ बनाए जाते हैं जो पूरी के अनुसार बनाए जाते हैं उसका विसर्जन करें और आर्टिफिशियल पर बिल्कुल वो गौर करें।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो पप्पा का जो पूरा स्वरूप है हमें कई तरह की शिक्षा देता है, जैसे उनके बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि सुनना ज़्यादा चाहिए, उनकी छोटी सी आंखें सिखाती हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बड़ा उदर ये सिखाता है कि सुनना सबकी चाहिए लेकिन और बहुत सारी चीजें हमें बर्दाश्त करनी चाहिए।
1: मैंने अभी मैम आपकी बात कर रहा हूँ।
0: जी,
1: जो देखा है कि गणपति जी का जो अभी आजकल जो हर कोई बंदा रीले बना रहा है यूज कर रहा है
0: जी,
1: उनमें जो ओरिजिनली जो रूप गणपति महाराज जी का है
0: जी,
1: वही रहने दीजिए तो अच्छा है। अभी मैंने अपने रीलों में देखा, मैंने गणपति जी का कुछ को ड्रैकुला का चेहरा दे दिया है, किसी को चूहे के सॉरी उसमें जो बेल वगैरह का रूप दे दिया है, किसी को वो जो चमगादड़ के रूप में दे दिया है। तो ये अपने जो हिंदू समाज के जो अपन लोग सनातन जो है
0: जी,
1: आगे लोग क्या सोचेंगे किस प्रकार की गणपति जी का हंसी उड़ाते हैं दूसरे समाज के लोग
0: जी। ये कहना चाहते हैं
1: ऑल इंडिया के
0: जी
1: ऑल इंडिया के जितने भी सुनने वाले हैं जो मूर्तिकार हैं जो भी सुन रहे होंगे उनसे मेरा निवेदन है कि मूर्ति का गणपति जी का जो
0: बहुत सौम्य है, एक बालक की तरह बहुत ही सौम्य स्वरूप है गणपति जी का, उसी सौम्य रूप में हम उन्हें ध्यान
1: जी हर रूप में उन्हें देखा जाता है तो बिल्कुल रूपाले लगते हैं,
0: बहुत सुहाने
1: ऐसे लगते हैं, अकेले लगते हैं
0: जी।
1: मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि आप हर प्रकार के करें लेकिन इसको अनादर के रूप में ना ले।
0: बिल्कुल आपने अच्छी बात कही ये, और निश्चित ही और इस पर अमल करेंगे अगर कोई भी मूर्तिकार सुन रहे होंगे तो। बिल्कुल, कोई भी देवी देवता हो उनकी मूर्ति बनाते समय या उनकी पूजन करते समय कुछ मर्यादाएं हैं, उनका ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
1: अभी ये इसके बस अभी आखिरी दिन है बचा है तो मैं गाने के माध्यम के रूप से मैं आपके सामने थोड़ा सा गुनगुनाना चाहता हूँ आपका।
0: जी बिल्कुल, स्वागत है आपका।
1: देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन।
0: क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर आवाज आपकी और बहुत सुंदर गाया आपने, ईश्वर जरूर आपकी पुकार सुनेंगे और आप पर हमेशा कृपा रहे बप्पा की, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए।
1: जय धन्यवाद, जय गणेश,
0: जय गणेश, नमस्कार। तो श्रोताओं चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, हमारे फ़ोन लाइंस खुल चुके हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07-34-405-4191। और आज का हमारा विषय है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, गणपति विसर्जन विशेष उत्सव 10 दिन का सीख उम्र भर के। और इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये 10 दिन उत्सव कैसे मनाया और आपको क्या सीख मिली। दोस्तों, बप्पा के एक हाथ में मोदक सिर्फ उनका प्रिय भोग नहीं है, बल्कि वो हमें जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा सिखाता है। वो हमें बताता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी उलझने क्यों न हो, अपने शब्दों, विचारों और व्यवहार में हमेशा मिठास बनाए रखनी चाहिए। चलिए इसी मिठास को और बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले गीत के साथ।

0: श्रोताओं, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं वो हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया से, आगर मध्य प्रदेश से।
0: पिपरिया से उमा शंकर जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं उमा शंकर जी?
1: सर बढ़िया है मैम, मैंने एक बार कॉल लगाया और बिल्कुल घंटी गई और उठ गया मैम। महाकालेश्वर की बहुत अच्छी कृपा है, मतलब पिछले हफ्ते भी लग गया था, ये दो बार में, तीन बार में, इस बार भी लग गया, मतलब मुझे तो बहुत खुशी होती है उनकी आकाशवाणी में बात करने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाबा महाकाल की कृपा आपके साथ है। और शंभु सुताए की आज हम बात कर रहे हैं, गणपति जी का जो 10 दिनों का हमारा उत्सव चल रहा था और आज मतलब कल अनंत चतुर्दशी है, विसर्जन की बारी है। हम जानना चाहते हैं कैसे मनाया आपने 10 दिन ये उत्सव?
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धूमधाम थी। हमारे घर में भी हम गणेश जी को विराजमान करे हैं, अभी भी हैं, कल उनकी विदाई करेंगे। 10 दिनों में, इन 10 दिनों में मैंने घर में भी आराधना करी, बाकी जो और जो समिति की रखी थी वहाँ भी हम गए, वहाँ भी बहुत सारे प्रोग्राम देखे और वहाँ भी इतना सहयोग, मतलब सेवा कर सके करी है और अभी कर भी रहे हैं फिलहाल में। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे उत्सव होते हैं जो गणेश चतुर्थ, मतलब गणेश जो होता है गणेश उत्सव और काली जी का जो उत्सव होता है, इन दिनों में ये समझो कि जीवन जीने का जो नजरिया है, जो प्रक्रिया है, वो सब चेंज हो जाती है। अच्छा लगता है जीवन जीने में, मजा आने लगता है।
0: त्योहार के दिन जैसे जैसे पास आते हैं त्योहारों की तैयारियों में और उनको मनाने की जो हमारी उत्साह होती है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने आप को समय देते हैं।
1: जी जी, और ऐसा लगता है कि हम इस पृथ्वी पर जीवन अच्छे यापन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भगवान के हित में। हम मतलब इस जीवन की जो प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, सुबह हुई, शाम हुई, मतलब ऑफिस गए फिर आ गए, इसमें हमें कुछ पता ही नहीं पड़ता, मगर जो ये ऐसे त्योहार आते हैं तो इनमें हमें कुछ लगता है कि हाँ कुछ है, मतलब इस पृथ्वी पर कुछ है मैम।
0: जी, हम जुड़ते हैं कई अपनी संस्कृति से, अपने और परंपराओं से जुड़ने को मिलता है।
1: जी,
0: और फिर
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और उत्सव में बहुत सारे लोग जब आपस में साथ आते हैं तो सबसे मिलते हैं, एकता का भाव फिर से पनपता है, क्योंकि आज व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गया है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही बात है ना कि मतलब 4 लोग मिलेंगे, बात करेंगे, उसमें एक बहाना हो जाता है, भगवान की भी आराधना होती है, तो सब चीजें एक कनेक्ट हो जाती है मैम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा। एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी मैं उमा शंकर जी, कि क्या सीख मिलती है हमें बप्पा से, ये जो 10 दिन का उत्सव है, अब कल बप्पा जाने वाले हैं, तो आप क्या मांगना चाहेंगे बप्पा से?
1: मांगने के लिए तो मैं कुछ ऐसी कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही तो मतलब बप्पा हम पे कृपा बनाए रखे, हम बस अच्छे स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, बस यही चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समस्त मानव जाति का कल्याण हो और सभी स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि आपकी ये सोच है, बहुत अच्छा लगा। जी
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: जी मैम, थैंक यू,
0: नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने कि उमाशंकर जी का ये कहना है कि वो समस्त मानव कल्याण की कामना करेंगे बप्पा से, और सीखने को भी हमें उनसे यही मिलता है कि उनका जो विसर्जन है ना, वो इस बात का भी प्रतीक है कि ब्रह्मांड में जिस भी चीज़ का निर्माण होता है, जन्म होता है, उसका वापस अपने मूल तत्व में लौटना तय है। मूर्ति मिट्टी से बनती है और जल में घुलकर वापस उसी प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। ये हमें जीवन के मोह से मुक्त होने और अहंकार को त्यागने की सीख देता है। साथ ही दोस्तों, कल विसर्जन का दिन है तो आप सभी भावुक भी होंगे, लेकिन कुछ सावधानियां हैं, वो अवश्य बरतें। और चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर।

श्रोताओं, आज आपके आत्मीय जवाबों और भावनाओं ने इस कार्यक्रम को सचमुच बहुत पवित्र और खास बना दिया। बप्पा का जाना हमें ये सिखाता है कि जीवन में उत्सव आते जाते रहते हैं, लेकिन जो संस्कार, एकता और प्रेम हम इन 10 दिनों में एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। विसर्जन सिर्फ मूर्ति का नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और बुराइयों का भी होना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है कि विघ्नहर्ता आपके जीवन के सभी दुखों का भी विसर्जन कर दें और आपके परिवार में हमेशा खुशियों का श्री गणेश हो। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। चलिए अब रुख करते हैं विविध भारती मुंबई की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग,
2: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से। मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शोभा जोशी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब की एक और रचना, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: अली।
1: आइए सुनते हैं सादिक निजामी का ये नातिया कलाम, आवाजें अजीज नाजा खव्वाल और उनकी हमनवा की, धुन मास्टर इब्राहिम की है।

मोहम्मद हुई है न होगी मिसाले मोहम्मद। सुनो ऐ मुहिबाने आले मोहम्मद, जिसे देखना

गम इश्क की आग दिल में लगा कर मोहब्बत को अपनी तमाशा बना कर

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाद साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना, गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: यह आवाज थी परवीन सुल्ताना की।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए संत सूरदास का ये भक्तिपद, स्वर घनश्याम वासवानी का है।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ बेचा।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद। इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाजमी का ये कलाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यूसुफ आजाद कव्वाल और उनके हमनवा के गाए अभी आपने ये कव्वाली सुनी। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें है जिया, यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है, यह इस कार्यक्रम का पहला गीत, स्वर लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कमर जलालाबादी की रचना, स्वर आशा भोंसले का और फिल्म का नाम फागुन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज मेरे द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आनंद। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा और धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज की जो महफिल हमने सजाई है उन्हीं गीतों के नाम है जिनमें है इंतजार, तन्हाई और बेचैन दिल की आवाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम लाल किला। गीत को बहादुर शाह जफर ने लिखा और धुन SN त्रिपाठी की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरबदा सपड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई वाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला किस्म को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल, फिल्म का नाम है नोटबुक, गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और एसिस कॉर्प।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आवाज भूपिंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए, इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने शहर में खुश हैं ना, या कहीं और गए हैं घूमने किसी और जगह? बताइएगा जरूर। हाँ, ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ, आप समझ गए होंगे। जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज पर नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भाई हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में खुश हैं या नहीं। वैसे तो हम अपने शहर में खुश रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी रहते। ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम जो ये सुरीला सफर है उसमें एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक धड़कन होती है, अपनी बोली, अपना रंग, अपना खान पान, अपना मौसम और अपनी एक कहानी होती है। और जब यही शहर या स्थान फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो ये संगीत हमें उन गलियों में, उन चौबारों में, उन जगहों तक ले जाता है जिन्हें शायद हमने कभी देखा भी नहीं होता, है ना। तो आइए सुरों के साथ आज निकल पड़ते हैं शहर दर शहर, गीत दर गीत। तो अब आप समझ गए हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं तो हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज पर नहीं है वो समझ जाएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, सुरीला सफर में आज सफर सिर्फ गीतों का नहीं है, शहरों और जगहों का भी है। तो आज जरा इन जगहों की भी सुनते हैं, कौन किसे अपने यहाँ बुला रहा है। आज पता है ये शहर, ये जगह आपस में बात कर रहे हैं। क्या सुनिए आप भी। अरे सुनिए, इतनी दूर क्यों खड़े हैं, आइए ना मेरे बीकानेर। कभी मेरी गलियों की रौनक देखिए, कभी मेरी हवाओं की गर्माहट को महसूस कीजिए। बीकानेर भाई, अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन रंग और शान देखनी हो तो मेरे जयपुर आइए। मेरी गलियों में घूमकर मेरे रंग देखिए, और वो जयपुर की। आखिर गीतों में मेरा नाम यूं ही तो नहीं लिया जाता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मन हुआ कि मैं भी कुछ कहूँ। आइए कभी मेरी वादियों में, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, झीलें, ठंडी हवाएं। मैं तो गीतों में भी कहती हूँ, कश्मीर की कली हूँ मैं। मुझे देखने के लिए बस दिल में थोड़ा सा मौसम होना चाहिए। अरे भैया, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूमकर देखिए। गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते आहा, एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझिए। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है या भूल गए? भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर, आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गए। कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है। और जनाब, इतना सफर जब कर ही लिया है तय तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की, उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत। तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा, अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसी लगी वहाँ की आबोहवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन? और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेहिल व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने

अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह, आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहां राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं, तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है। आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं, लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं, जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखने की बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल, कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहां के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था, आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गायकी याद दिलवा दी, जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आहुनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूं। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूं अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूं और तनोट बॉर्डर भी घुमा हूं, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूं, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें, और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में

आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत? अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है या आप जिसे बहुत मिस करते हैं। या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है जंगली।

हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हूँ कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहाँ हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए, जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता। मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहां पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्मभूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौड़ी मिलती है और कढ़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है और मुंबई मेरी जान है। लाल बाग, चा राजा, गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूं तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, जी हाँ, बंबई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर आहा, ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ, हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी एक गीत में आता है, फिल्म जानीमन इलाहाबाद में पैदा हुई में जबलपुर में पली। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना, ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ न कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीज़ें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा।

0: बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?
1: झुमका गिरा।

0: झुमका घिरा रे बरेली के बाजार में। तो चलिए बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। तो हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूं जहां से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूं, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती के एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूं जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाणा ना नखरा बदा, नाणा ना सो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है बड़ोदरे लावो लऊ ने करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पणतारी साथे नहीं रहू मने मंगाविश तू लोटरी। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं। हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है, सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहां, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूल ही गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

Hey, we're breaking news. Hide.

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राज्य का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूं और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूं और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गांव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूं और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूं और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वही एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियां, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्य मई इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अभी तो पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है। फिल्म का नाम CID।

0: जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में जरूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना, क्योंकि अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ये सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सांझ और सवेरा का एक गीत, और गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत है शंकर जयकिशन का। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आम्रपाली से, आवाज लता मंगेशकर की है। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परवाना का एक गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है। कैफ़ी आज़मी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवास जिले के पुंजापुरा से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा में शामिल हुए देवास के दीपेश गोटी से संवाद किया।
2: मैं दीपेश गोटी, मध्य प्रदेश देवास से।
3: बताइए आप अपनी यात्रा के संबंध में।
2: मैं जब वडनगर से काशी विश्वनाथ की यात्रा में निकला तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। मैं जगह जगह सेवा कार्य किए, स्वच्छता और वृक्षारोपण किया।
3: आपके साथ जो लोग हैं अन्य राज्यों के, उनसे कुछ सीखने को मिला क्या?
2: जी, उनसे भी कुछ भाषा सीखने को मिल रही है। कोशिश कर रहे हैं हम के उनकी जो भाषा है, मातृभाषा है, सीखने का प्रयत्न करें।
1: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35,42,000 से हितग्राहियों के खातों में 212,57,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर को प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। सेवा के पहले चरण में प्रदेश भर में 1,500 बसों का संचालन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर को भोपाल में सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ के साथ प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वर्ष 2031 तक प्रदेश भर में लगभग 15,000 बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर और सिटी के भीतर भी बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। PPP मॉडल पर आधारित इस सेवा के जरिए ट्रांसपेरेंट बस संचालन होगा और यात्रियों की जरूरत के अनुसार आधुनिक बस टर्मिनल, बस स्टैंड, डिपो, बस स्टॉप का विकास किया जाएगा जो सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान देगा।
1: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रसिद्ध संगीत निर्देशक शांतनु मैत्रा को प्रदान किया जाएगा। इंदौर में 27 और 28 सितंबर को लता मंगेशकर सभागार में 2 दिवसीय अलंकरण समारोह और संगीत संध्या आयोजित होगी। 27 सितंबर को अमर लता हमारी लता संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे, जबकि 28 सितंबर को शांतनु मैत्रा को 5,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद गायक जोड़ी सचेत परंपरा की संगीत संध्या होगी। दोनों कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीन को 37-21 से हराकर कबड्डी स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप चरण में ये भारत की लगातार चौथी जीत है। इससे पहले भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश को हराया था। कबड्डी 1990 से एशियाई खेलों का हिस्सा है और भारतीय पुरुष टीम ने इसमें 8 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने भी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ईरान को 37-23 से हराया। महिला टीम का अगला मुकाबला जापान से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से आज छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान के तहत झाबुआ जिले में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसके अलावा सेवा मेरा योगदान गतिविधि में जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी विंग में सेवा गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। शिवपुरी जिले के विकासखंड पोहरी के अंतर्गत बैराड़ में कल कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक वितरण प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 प्रमुख दुकानों को सील कर दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आगरमालवा जिले के ग्राम कांकरिया में कल जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में उर्वरकों और रसायनों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी गई। प्रदेश में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को सेवा, पोषण, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में, दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
3: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च

0: केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
3: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
4: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी

0: समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
2: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।

0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म उजाला के गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। जब मैं लोगों को हंसाता हूं तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश। नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: ही सहेली।
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को, सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती। तो आरती, तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
2: बिल्कुल। और मंजरी जी, आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: क्या बात है, और बताओ कैसे?
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता
2: है। बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
1: बिल्कुल दुखता है,
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
1: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
1: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी से बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं। तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं। ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमय दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम चौंक जाते हैं,
1: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है। और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
2: कहते हैं ना, जो इंसान ने वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बना है, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो।
1: बिल्कुल, है ना। तो इस पर बातें करेंगे और मुझे कुछ कहना है। हाँ। कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि दो महीने पहले, एक हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
2: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
2: और जब कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: बाद शायद उससे पहले भी हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आरती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल, और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।

0: आती।
1: बिल्कुल, और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आरती हाँ। देखो हमारे साथी क्या लिखते
2: हैं
1: बताओ।
2: हाँ तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार है, जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि रहस्यमय जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है, लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियां इसे

0: हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिससे जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60 से 80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
1: बिल्कुल। और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहां पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
0: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो भुनसारे अपन नरब दशा पड़वे चल।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची

0: महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल, अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल, और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती
0: है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल, पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल, उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल,
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, उस छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
4: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि उन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, अनुभव लिखे हुए हैं।
3: तो हमारे साथी देखो एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
4: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये है? चाय पीने के लिए गाने गाके
3: मना लेते हैं।
4: बिल्कुल मना लेते हैं।
3: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरीखी पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
4: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
3: सब बजते हैं। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
4: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब

0: किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
0: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
1: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसा रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
0: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए, है ना। एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हो सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए।
1: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
0: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ की रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहां कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी हैं जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती है और बहन को डांटने लगती है। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो,
1: पास हाँ, सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: 2-3 बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे?
1: जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल।
1: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं गुलजार साहब
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया है, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा न जैके पार फिल्म का, आप गाने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बट भैया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की, रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर, आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, पर के 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर। बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713, और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है, और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं, तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी।
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: वो भी सुनता हूँ, और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
1: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
0: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
1: बहुत बहुत
0: बात करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
1: जी जी जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
0: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम, और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल दुआएं, बताइए।

0: फिल्म का नाम है धरती।
1: अच्छा,
0: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
1: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
0: सर, रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
1: जी जी।
0: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
1: जी जी जी।
0: और सर, आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
1: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
0: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
1: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
0: सर, नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गाँव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: और वादी कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए,
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादी कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: ये ककवासा आपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जी रोड है ना, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गाँव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके गाँव की क्या हालत है?
1: गाँव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ हैं?
1: गांव के हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा
1: सर जी, पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए, मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नग में, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी?
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया
1: जी। सर जी विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान ली सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम ले।
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा रहा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह, ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है?
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे, ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है
1: जी? संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं। मन चाहे प्रोग्राम से इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियाँ देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की 2 मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
3: नमस्कार, FM 102.5 MHz साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अब आप सुनेंगे एक ऐसा कार्यक्रम जो युवाओं की सोच, उमंग और जोश को एक नई दिशा प्रदान करता है, कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन के सभी ऊर्जावान, उत्साही और प्यारे युवा श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मंच युवाणी में। आज तारीख है 24 सितंबर 2026, दिन है गुरुवार और स्टूडियो में आपके साथ मौजूद हूँ मैं, आपका दोस्त आशुतोष,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त रिति। आज की यह सुहानी शाम अपने साथ नई उम्मीदें, तास की भरी उमंगे और ढेर सारी बातें लेकर आई है। आशुतोष, सच कहूँ तो यह 5 से 6 का समय मुझे बहुत खास लगता है, क्योंकि यह दिन भर की थकान मिटाकर हमें अपने भीतर की नई संभावनाओं को टटोलने का मौका देता है।
0: बिल्कुल सही कहा रिति, युवाणी हमारे युवाओं के सपनों, उनके संघर्षों, उनकी रचनात्मकता और उनकी आवाज का एक सच्चा और सजीव दर्पण है। जब भी हम इस स्टूडियो में माइक के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम अपने कॉलेज कैंटीन, लाइब्रेरी या हॉस्टल के कॉमन रूम में बैठकर दोस्तों से गपशप कर रहे हों।
1: बिल्कुल आशुतोष, और आज की हमारी इस गपशप का पिटारा इतना समृद्ध है कि हमारे श्रोता अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाएंगे। आज हम भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड के उस सुनहरे सफर पर चलेंगे जिसने हमारी जिंदगी को हंसना, रोना और ख्वाब दिखाना सिखाया है।
0: और उस सफर में आकाशवाणी और दूरदर्शन की उस ऐतिहासिक भूमिका को भी याद करेंगे जिसने हर घर में सुर और तस्वीरों का जादू बिखेरा। साथ ही बात करेंगे एक बेहतरीन फिल्म के पीछे, पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी टीम की मेहनत कितनी बड़ी प्रेरणा देती है।
1: इसके अलावा आज विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरीटाइम डे है, पर हम समुद्र की उन लहरों और व्यापारिक मार्गों को समझेंगे जो युवाओं के लिए एडवेंचर और शानदार करियर के दरवाजे खोलते हैं।
0: और आज का दिन तो हमारे गौरव का दिन भी है रिद्धि। आज ही के दिन साल 2014 में भारत के मंगलयान ने पहली ही कोशिश में लाल ग्रह पर तिरंगा लहराया था। साथ ही विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने वाली वीरांगना मैडम भीखाजी कामा के योगदान को भी नमन करेंगे।
1: और दोस्तों, कल आने वाली पवन अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर विघ्नहर्ता बप्पा से विदाई की सीख भी लेंगे।
0: तो चलिए बातों के इस खुशनुमा सफर को गति देते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा और दिलकश नगमा।

दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगम का सदाबहार और लोकप्रिय गीत। इस सुरीले गीत को अपनी जादुई आवाज दी थी मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने। इसका अमर संगीत तैयार किया था संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने और इसके खूबसूरत बोल लिखे थे गीतकार शैलेंद्र ने। दोस्तों, आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म का 35वां एपिसोड का सजीव प्रसारण अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें। प्यार के सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुलनीय योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक।

0: अलका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और बहुत मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
0: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है आपके सामने, आपको पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है, ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
1: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
0: कोई भी गीत, कोई भी।
1: लता जी का गाना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।
0: क्या बात है,
1: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए?
0: और हम आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर, क्योंकि ये कैसा पड़ाव होता है ना,

0: जी, जब आप मुड़कर देखते हैं कि मतलब मुझे पद्म भूषण मिला है तो जिंदगी में मैंने क्या क्या हासिल किया, आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार हासिल किया है सबका, किसको देती हैं इसका श्रेय?
1: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी, और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में, ताकि उसको जिस तरह से यूज कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं,
0: बाकी बहुत खुश होती हैं। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुंचाया था, तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
1: हाँ, किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे, और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
0: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
1: हाँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब मैं आई इस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था। तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए गाने को, एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
0: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया, कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है, जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
1: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है, और जूही चावला, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
0: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
1: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी। गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो है किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी, मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
0: अच्छा, अगर गायकों की बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोर दा के साथ साथ आपने उदित नारायण, कुमार सानू तक सबके साथ ही गाने गाए हैं। इन सबके साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
1: किशोर कुमार।
0: कोई वाक्य याद है?
1: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त, रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था, फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
0: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
1: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
0: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप साइशा को क्या लोरी सुनाती थी?
1: साइशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
0: अच्छा,
1: वो भी गाती थी मैं उनके लिए, उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
0: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
1: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते थे, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
0: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ, एनी टाइम?
1: एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
0: आप एक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का?
1: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: ओके, क्लासिकल म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक।
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस।
0: ओके, एक सॉन्ग कोई भी कभी का भी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया होता?
1: जी, ये गाना जैसे है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया
0: जी,
1: लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता ये गाना।
0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगारी हैं।
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती, नॉर्मल।
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या कुछ, मैं यूं ही गाती थी। मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
0: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आए हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?
1: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
0: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे, अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना चाहेंगे?
1: अपना फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर। ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
0: Well, that is so nice of you. Thank you so much, अलका जी. I'm sure हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सबके तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं।
1: थैंक यू। थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म और आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित पीपल्स पद्म का 35वां एपिसोड का सजीव प्रसारण।
3: आशुतोष, आज जब हम बॉलीवुड डे की बात कर रहे हैं तो भारतीय सिनेमा का 100 से भी ज्यादा सालों का यह इतिहास किसी जादुई परिकथा से कम नहीं लगता।
2: सचमुच रीति, सोचिए साल 1913 में जब दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई थी तब पर्दे पर आवाज नहीं थी, सिर्फ मूक तस्वीरें चला करती थी, लेकिन उस मूक अभिनय में भी हमारे समाज की आत्मा बसती थी। फिर साल 1931 में आर्देशिर और ईरानी साहब की आलम आरा आई और भारतीय सिनेमा ने पहली बार बोल उठा दे दे खुदा के नाम पर प्यारे।
3: क्या ऐतिहासिक पड़ाव था वो। उसके बाद 50 और 60 का दशक आया जिसे हम आज भी भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा कहते हैं। बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, राज कपूर और के आसिफ जैसे दिग्गजों ने ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने न सिर्फ समाज के यथार्थ को छुआ बल्कि दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पहचान बनाई। मदर इंडिया, प्यासा और मुगले आजम जैसी फिल्में आज भी सिनेमाई दुनिया की मील के पत्थर हैं।
2: और रिद्धि, अगर हम 70 के दशक के एंग्री यंग मैन दौर, 80 के म्यूजिकल बदलाव और 90 के दशक के रोमांटिक दौर से होते हुए आज के आधुनिक वैश्विक दौर को देखें तो एक बात साफ दिखती है, सिनेमा ने हमेशा हमारे समाज के बदलावों को अपनी पटकथा में ढाला है। लेकिन रिद्धि, इस पूरे सफर में एक संस्था ऐसी है जिसके बिना बॉलीवुड का आम जनमानस तक पहुंचना शायद मुमकिन ही नहीं था।
3: बिल्कुल आशुतोष, मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रहे हो। हमारा अपना प्रसार भारती यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन।
2: बिल्कुल रिद्धि, जरा याद कीजिए उस दौर में जब घर घर में टेलीविजन नहीं थे, मल्टीप्लेक्स नहीं थे, इंटरनेट और स्मार्टफोन का तो नामो निशान नहीं था। तब बॉलीवुड के गानों को गांव-गांव, खेत खलिहान और हर गली मोहल्ले तक किसने पहुंचाया? आकाशवाणी के विविध भारती ने।
3: सचमुच, दोपहर के समय मनचाहे गीत, रात को छाया गीत, संगीत सरिता और जवानों के लिए जयमाला, अमीन सयानी साहब की मखमली आवाज में बिना का गीत माला सुनने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान बुधवार की शाम को रेडियो सेट के इर्द गिर्द जम जाता था। रेडियो ने ही मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश जैसे गायकों को हमारे परिवार का सदस्य बना दिया।
2: और फिर जब घरों में दूरदर्शन का एंटीना लगा तो रविवार की शाम का मतलब ही होता था शाम 6 बजे की फीचर फिल्म। पूरा मोहल्ला किसी एक टीवी वाले घर में सिमट जाता था। चित्रहार और रंगोली के वो आधे घंटे पूरे हफ्ते का सबसे बड़ा उत्सव हुआ करते थे। दूरदर्शन ने बिना किसी व्यवसायिक होड़ के सिनेमा को एक पारिवारिक संस्कार और सांस्कृतिक मिलन का रूप दिया।
3: आज जब हम OTT और सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं तभी आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सिनेमा को पहुंचाए गए उस विस्तार की सादगी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। और बॉलीवुड की उस जादुई दुनिया की बात चल ही रही है तो चलिए अब अपने कदमों को थिरकने का एक मौका देते हैं। सुनते हैं एक बेहद चुलबुला और मस्ती भरा गीत।

0: अभी आपके कानों में मिठास घोल रहा था फिल्म हम जोली का यह मस्ती भरा गीत। इस गाने को गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इसका धड़कने बढ़ा देने वाला संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, और इसके दिलकश बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: वाह रिद्धि, क्या जबरदस्त ऊर्जा थी इस गाने में। लेकिन जब भी हम कोई शानदार फिल्म या गाना देखते हैं तो हमारी नजर सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री पर टिक जाती है। हम तालियां बजाते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं।
0: बिल्कुल आशुतोष, जबकि हकीकत

0: यह है कि स्क्रीन पर दिखने वाला चेहरा उस विशाल कई पहाड़ की सिर्फ ऊपरी नोक भर होता है। एक सफल और यादगार फिल्म किसी एक इंसान के बूते कभी नहीं बन सकती। यह सैकड़ों हुनरमंद हाथों और दिमागों की सामूहिक तपस्या का परिणाम होता है।
1: तुमने बिल्कुल सही कहा रिद्धि। जरा सोचिए, अगर किसी फिल्म की कहानी और पटकथा में दम न हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी उस फिल्म को डूबने से नहीं बचा सकता। लेखक वह नींव रखता है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है, और फिर निर्देशक उस दृष्टि को पर्दे पर जीवंत करता है, जिसे हम विजन कहते हैं।
0: और संगीत विभाग की बात ही निराली है। संगीतकार धुन बनाता है, गीतकार उन सुरों में ऐसी शायरी पिरोता है जो सीधे रूह में उतर जाए, और फिर पार्श्व गायक अपनी आवाज से उसमें प्राण फूंकते हैं। और इनके अलावा कैमरामैन यानी सिनेमेटोग्राफर जो हर दृश्य को रंगों और रोशनी से तराशता है, एडिटर जो अतिरिक्त दृश्यों को काट कर फिल्म को गति देता है, और साउंड इंजीनियर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर तथा पर्दे के पीछे धूप पसीने में काम करने वाले अनगिनत टेक्नीशियंस।
1: बिल्कुल, और जब यह पूरी टीम बिना अपने अहंकार को बीच में लाए एक साझा लक्ष्य के लिए समर्पित होती है ना, तभी कोई शोले, लगान या तारे जमीन पर जैसी रचना जन्म लेती है। हमारे देश में सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं, जो है साबित करते हैं कि कला जब समाज से जुड़ती है तो अमर हो जाती है।
0: आशुतोष, यहाँ हमारी आज के युवाओं और छात्रों के लिए जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक सबक छिपा है, टीम वर्क यानी सामूहिक सहयोग। चाहे आप कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हों, कोई सांस्कृतिक फेस्ट आयोजित कर रहे हो, या अपने स्टार्टअप की नींव रख रहे हो।
1: बिल्कुल सही कहा रिद्धि। अक्सर युवा सोचते हैं कि सारा श्रेय मुझे ही मिल जाए या मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन सिनेमा हमें सिखाता है कि अकेले आप शायद तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन दूर तक जाना हो तो पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। हर साथी की विशेषज्ञता का सम्मान करना और साझा सफलता में खुशी तलाशना ही एक सच्चे लीडर की पहचान है।
0: क्या बात है आशुतोष, जब सब मिलकर एक धुन में बजते हैं तो जिंदगी का हर प्रोजेक्ट ब्लॉकबस्टर बन जाता है। तो चलिए, इसी सिनेमाई दीवानगी और एक जुटता का जश्न मनाते हुए सुनते हैं एक ऐसा गाना जिसमें पूरा बॉलीवुड एक साथ झूम उठता है।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे फिल्म ओम शांति ओम का ऊर्जा से भरपूर गीत। इस धमाकेदार गाने को अपनी आवाज दी थी शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना ने। इसका शानदार संगीत तैयार किया था विशाल शेखर ने और इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने।
5: सिनेमा के पर्दे से निकलकर अब हम चलते हैं उन विशाल नीले समंदरों की ओर जो हमारी इस धरती के 3/4 हिस्से को घेरे हुए है। आशुतोष, आज 24 सितंबर है, यानी सितंबर महीने का अंतिम गुरुवार, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आज पूरी दुनिया में विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरिटाइम डे मनाया जा रहा है।
4: बिल्कुल रिद्धि, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO ने साल 1978 में इस दिवस की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा, जहाजरानी और हमारे बहुमूल्य समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
5: आशुतोष, अक्सर जमीन पर रहने वाले हम लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी समंदर पर कितनी निर्भर है। क्या हमारे युवा साथी जानते हैं कि वैश्विक व्यापार का 80-90% से भी ज्यादा सामान समुद्री जहाजों के जरिए ही एक देश से दूसरे देश पहुंचाता है?
4: बिल्कुल सही कहा तुमने रिद्धि। हमारा मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर चिप्स, हमारी गाड़ी का ईंधन, रसोई का अनाज, कपड़े और दवाइयाँ, अगर समंदर के रास्ते विशाल मालवाहक जहाज चलना बंद कर दें तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और हमारा आम जनजीवन कुछ ही दिनों में ठप हो जाएगा। नाविक यानी सी फेयरर्स इस दुनिया की अदृश्य जीवन रेखा हैं।
5: और इस वर्ष की थीम भी इसी बात पर जोर देती है कि हम अपने समुद्री परिवहन को कैसे पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस बनाएं। आज के दौर में ग्रीन शिपिंग, शून्य कार्बन उत्सर्जन और समंदर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।
4: और यदि हमारे देश के युवाओं के लिए यह क्षेत्र संभावनाओं का एक अथाह समंदर लेकर आता है। भारत की समुद्री तट 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सरकार के सागरमाला प्रोजेक्ट और ब्लू इकोनॉमी मिशन के तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो रहा है। मर्चेंट नेवी, मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस, ओशनोग्राफी, शिप डिजाइनिंग और मैरिटाइम लॉ जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए बेहद रोमांचक और उच्च वेतन वाले करियर विकल्प मौजूद हैं।
5: बिल्कुल, मर्चेंट नेवी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह दुनिया देखने का

0: जुनून, अनुशासन, कठिन समुद्री तूफानों में धैर्य बनाए रखने का इम्तिहान और अपने देश की आर्थिक प्रगति में सीधा योगदान देने का गौरव है।
1: और यह दिवस हमें जीवन का यह पाठ भी पढ़ाता है कि लहरें चाहे जितनी भी उतावली हों, अगर जहाज का कप्तान शांत और दिशा सूचक यंत्र पर केंद्रित रहे तो हर तूफान पार हो जाता है। जिंदगी में भी संयम ही हमारी सबसे बड़ी नाव है।
0: बहुत सुंदर आशुतोष, तो चलिए समुद्र की इन्हीं लहरों पर अपने सपनों का पाल बांधते हैं और सुनते हैं एक बेहद सुरीला और ताजगी भरा गीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कहो ना प्यार है का दिलकश गीत। इस मधुर तराने को अपनी आवाज से सजाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इसका संगीत रचा था राजेश रोशन ने और इसके बोल लिखे थे सावन कुमार टाक ने।
1: समंदर की गहराइयों के बाद रिद्धि अब नजरें उठाते हैं उस अनंत अंतरिक्ष की ओर, जहां भारत के वैज्ञानिकों ने आज ही के दिन एक ऐसा इतिहास रचा था जिसे दुनिया आज भी नतमस्तक होकर याद करती है। आज से ठीक 12 साल पहले यानी 24 सितंबर 2014 को भारत के मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन ने पहली कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था।
0: बिल्कुल आशुतोष, वह सुबह हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देने वाली सुबह थी जब इसरो ने टेलीमेट्री ट्रैकिंग सेंटर पर वैज्ञानिकों की तालियां गूंजी और लाल ग्रह के चारों तरफ भारत का उपग्रह चक्कर काटने लगा। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने का करिश्मा कर दिखाया और एशिया का पहला ऐसा राष्ट्र जिसने मंगल ग्रह की कक्षा को छुआ।
1: और रिद्धि, इस मिशन की सबसे हैरान कर देने वाली और एक प्रेरक बात क्या थी जानते हैं आप? इसका बेहद कम बजट। जहां हॉलीवुड के अंतरिक्ष पर बनी फिल्मों का बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा था, वहीं इसरो के जाबाज वैज्ञानिकों ने इस पूरे मिशन को मात्र 450 करोड़ रुपए में पूरा कर दिखाया, यानी पश्चिमी देशों की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम लागत में।
0: सचमुच आशुतोष, दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए थे कि भारत ने इतनी सीमित संसाधनों में इतना सटीक और जटिल मिशन कैसे पूरा किया। हमारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके ईंधन बचाया जिससे दुनिया ने फ्रूगल इनोवेशन यानी भारतीय सूझबूझ और प्रतिभा का लोहा माना।
1: और उससे भी बड़ी बात रिद्धि, इस मंगलयान को महज 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के हुनर और तकनीक का कमाल देखिए, यह यान 7 साल से भी ज्यादा समय तक अंतरिक्ष से तस्वीरें और वैज्ञानिक आंकड़े भेजता रहा। इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की जो निर्णायक भूमिका थी, उसने पूरी दुनिया में भारतीय नारी शक्ति का परचम लहरा दिया।
0: आशुतोष, आज के हमारे युवाओं के लिए मंगलयान की यह सफलता सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह जिंदगी जीने के एक बुनियादी मंत्र है। अक्सर हम युवा यह शिकायत करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पैसे की कमी है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा रिद्धि, मंगलयान हमें सिखाता है कि बड़ी सफलताएं बड़े बजट की मोहताज नहीं होती, वे बड़े हौसले, सटीक योजना, समर्पण और टीम वर्क की मोहताज होती हैं। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक देते हैं, तो आप सीमित साधनों में भी असीमित ऊंचाइयों को छू सकते हैं।
0: अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाइए और जब भी कोई कहे कि यह काम पहली बार में नहीं हो सकता, तो मंगलयान को याद कीजिए। तो आइए इसी वैज्ञानिक गर्व और जीत की भावना को महसूस करते हुए एक जोशीला गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिशन मंगल का गीत। इस खूबसूरत गाने को गाया था बैनी दयाल और विभा सराफ ने। इसका संगीत दिया था संगीतकार अमित त्रिवेदी ने और इसके बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने।
1: हंसी खुशी और सुरों के इस सफर के बाद अब युववाणी का यह मंच एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुंचा है जहां हमारी भावनाएं और आस्था बहुत गहरी हो जाती है। दोस्तों कल 25 सितंबर 2026 को पावन अनंत चतुर्दशी का पर्व है।
0: बिल्कुल रिद्धि, पिछले 10 दिनों से हमारे घरों, मोहल्लों और पूरे शहर में जिस मंगलमूर्ति बप्पा के आगमन से खुशियों और ढोल ताशों की गूंज थी, कल उनके विसर्जन का दिन है। लेकिन विदाई के इन भावुक पलों से पहले आइए हम यह विचार करें कि विघ्नहर्ता श्री गणेश का यह अलौकिक स्वरूप हमें जीवन जीने की क्या सीख देता है।
1: सचमुच आशुतोष, गणेश जी का हर अंग एक गहरा जीवन दर्शन है। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि अपनी सोच को हमेशा बड़ा और व्यापक रखिए। उनके छोटे छोटे लेकिन पैने नेत्र हमें जीवन में गहरी दृष्टि और एकाग्रता रखने की प्रेरणा देते हैं और उनके बड़े बड़े कान हमें यह समझाते हैं कि एक अच्छा इंसान वही है जो बोले कम और दूसरों के सुख दुख को धैर्य से ज्यादा सुने।
0: और उनका छोटा मुख हमें हमेशा संयमित और मीठे बोल बोलने की सीख देता है। उनका एक टूटा हुआ दांत त्याग और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है जिससे उन्होंने बिना रुके महर्षि वेदव्यास के मुख से महाभारत को लिपिबद्ध किया था। यानी किसी महान कार्य के लिए अपने सुख या अहंकार का त्याग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है।
1: लेकिन आशुतोष, जब हम कल बप्पा को विदाई देंगे तो सबसे बड़ा संदेश जो हमें अपने जीवन में उतारना है वह है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश। हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के गणेश बनाने की परंपरा इसलिए शुरू की थी ताकि जो मिट्टी से जन्मा है वह विसर्जन के बाद वापस उसी प्रकृति की मिट्टी और जल में विलीन हो जाए।
0: बिल्कुल रिद्धि, पिछले कुछ दशकों में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जहरीले रासायनिक रंगों का इस्तेमाल बढ़ा है उसने हमारी पवित्र नदियों, सरोवरों और जल जीवों को भारी नुकसान पहुँचाया है। आज के जागरूक युवाओं का यह पहला कर्तव्य है कि हम केवल माटी के गणेश अपनाएं, अपने घरों में किसी गमले या कृत्रिम कुंड में विसर्जन करें और उस माटी में एक नया पौधा रोपकर बप्पा के आशीर्वाद को एक नए जीवन के रूप में सजो लें।
1: और आशुतोष, सच कहूं तो 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। घर के आंगन में जब बप्पा विराजते हैं तो सुबह की आरती की सुगंध, मोदक का प्रसाद और वह आत्मीय माहौल पूरे परिवार को एक डोर में बांध देता है।
0: बिल्कुल रिद्धि, और कल जब आरती की थाली सजेगी और हम सब हाथ जोड़कर कहेंगे गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, तो हर भक्त की आंख में एक अनकहा सा आंसू और दिल में खालीपन जरूर होगा। लेकिन यही विसर्जन का सच्चा आध्यात्मिक अर्थ भी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, मोह से मुक्ति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ही जीवन का सत्य है।
1: तो आइए दोस्तों, अपनी भीगी पलकों और श्रद्धा भरे मन से बप्पा को विदाई देने की तैयारी करें और सुनते हैं विसर्जन की ऐसी पावन और भावुक अनुभूति को समर्पित यह अमर गीत।

0: उनको। दोस्तों, अभी आपके दिलों को भावुक कर रहा था फिल्म अग्निपथ का यह गीत। ये इस पावन गीत को अपनी भावभीनी आवाज दी थी सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और अनुपमा देशपांडे ने। इसका संगीत रचा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसके मार्मिक बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: अरे वाह आशुतोष, इस गाने की खूबसूरती ने तो पूरे स्टूडियो का माहौल ही भक्तिमय बना दिया। लेकिन अब घड़ी की सुइयां हमें यह इशारा कर रही है कि हमारे आज के इस रंगारंग और ज्ञानवर्धक सफर को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है।
0: सचमुच रिद्धि, जब युवाओं के साथ इतने दिलचस्प, प्रेरक और उपयोगी बातचीत चल रही हो तो समय का पहिया कैसे तेजी से घूम जाता है इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। आज का यह पूरा कार्यक्रम बहुत खास और यादगार रहा।
1: बिल्कुल आशुतोष, आज हमने बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास और उसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की ऐतिहासिक भूमिका को शिद्दत से याद किया। हमने जाना कि कैसे एक फिल्म की सफलता पूरी टीम के तालमेल पर टिके होती है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए भी टीम वर्क का सबसे बड़ा पार्ट है।
0: साथ ही विश्व समुद्री दिवस पर हमने एक समुन्दर की अथाह संभावनाओं और मर्चेंट नेवी के साहसिक करियर को समझा। मंगलयान की उस ऐतिहासिक जीत को याद करके अपने भीतर सीमित संसाधनों में बड़ा सोचने का भरोसा जगाया।
1: और हाँ, कल आने वाली अनंत चतुर्दशी पर बप्पा के दर्शन और पर्यावरण रक्षा की शपथ ली।
0: हमें पूरा विश्वास है कि आज के इन सभी विषयों ने हमारे प्यारे युवा साथियों के दिल और दिमाग में एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक नई उमंग जरूर भरी होगी।
1: और आभार हमारे प्यारे श्रोताओं का, जो हर रोज हमारे इस सफर के हम सफर बनते हैं।
0: दोस्तों, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, सकारात्मक रहिए और समाज में अच्छाई की रोशनी फैलाते रहिए। आपका यह पसंदीदा मंच युववाणी फिर मिलेगा आपसे कुछ नए मुद्दों, नई प्रेरणाओं और मीठे तराने लेकर। आपके साथ हम थे आपके रेडियो मित्र आशुतोष
1: और रिद्धि। हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

FM 102.5 MHz साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अब समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का।

श्रोताओं, शाम का वक्त है तो क्यों ना कुछ ऐसा सुना जाए जो दिल को एकदम सुकून से भर दे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और मैं हूं आपके साथ कृष्णा शर्मा। दोस्तों, आज भजन संध्या में हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारे भजन हैं जिन्हें दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज़ से सजाया है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से भजन के साथ।

वाह, क्या आवाज़ है! मन सच में एकदम शांत हो गया। श्रोताओं, अब जो अगला भजन है वो अपने आप में ही इतिहास है। जब देश के दो सबसे बड़े लेजेंड्स एक साथ मिल जाएं, तो जादू तो होना ही होता है। पंडित भीमसेन जी जोशी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनते हैं अगला भजन।

तो श्रोताओं, मज़ा आया ना सुनकर। पर सिलसिला यहीं थमेगा नहीं। लता दीदी की मीठी आवाज़ में एक और भजन हमारे पिटारे में है, जो आपके मन को और भी सुकून देगा। तो आइए सुनते हैं।

0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
3: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
4: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
5: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
4: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी। समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीर आजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा जीता है, जबकि डबल स्कल्स रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए सभी को नौजवानों के अहम रोल को पुरजोश तरीके से बढ़ावा देना होगा। जनाब मोदी ने वड़नगर से वाराणसी का सफर कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि सियासत, इंतखाबात और निजाम हुक्मरानी की अपनी अपनी जगह है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए वक्फ लोग हैं।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: वजीर आजम ने कहा कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद हयात होना चाहिए और ये जज्बा हर फर्द में मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी कोई आला ओहदे पर पहुंच जाए तब भी खिदमत ही मशाले राह होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: जनाब मोदी ने कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मुहर्रिक है और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफ़े आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि यह खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: हुकूमत ने खुर्दनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी खुर्दनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD में कटौती की है। इस कदम से खुर्दनी तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूरजमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 0, जबकि सोयाबीन के खाम तेल और खाम पाम तेल पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वजारत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिफाइंड खुर्दनी तेल पर आयद होने वाली BCD में कटौती की है, साथ ही साथ खाम तेल और रिफाइंड खुर्दनी तेलों के दरमियान इम्पोर्ट ड्यूटी के फर्क को 19.25% पर बरकरार रखा है। वजारत ने मजीद बताया कि खुर्दनी तेलों की BCD पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुर्दनी तेल की अंजुमनों और सनती शराकत दारों को एडवाइजरी जारी की है ताकि इंपोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदों के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि मिशन कर्मयोगी के जरिए इस नज़रिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन कर्मयोगी का आगाज़ सितंबर 2020 में एक ऐसी सिविल सर्विस के तसव्वुर के साथ किया गया था जो मुस्तकबिल के तकाज़ों से हमाहंग हो, भारतीय अकदार से जुड़ी हो और आलमी नुक्ता नज़र की हामिल हो। इस मिशन का मकसद सरकारी अफसरान की सलाहियतों और महारतों को मजबूत बनाना और सिविल सर्विस को शहरियों पर ज़्यादा मरकूज़ बनाना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 120 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड सारिफीन हैं और मुख्तलिफ शोबों, फंक्शनल और रवैया जाती सलाहियतों से मुतालिक 6500 से ज़्यादा कोर्सेज दस्तयाब हैं। इनमें मस्नूई ज़हानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक 200 से ज़्यादा कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनका मकसद सरकारी अफसरान को डिजिटल मालूमात और महारतों से आरास्ता करना है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का मकसद सरकारी अफसरान को शहरियों पर मरकूज बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का आगाज 2047 तक विकसित भारत के अज़्म को पूरा करने के विजन के साथ किया गया।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य हैं, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: तमाम मरकजी सरकारी मुलाजमीन और ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के अफसरान के लिए अपने मुतालिका शोबों में आई गॉट कर्मयोगी पर सालाना मुकर्रा कोर्सेज मुकम्मल करना जरूरी है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और मुत्तसला जुनूबी ओडिशा में बने हवा के गहरे दबाव की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से सड़कों पर आमोदरफ्त मुतासिर रही। इस दौरान रियासती हुकूमत ने राहत और इनखला से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं कल और हफ्ते के रोज भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा के 6 जिलों कोरापुट, गजापति, मलकानगिरी, गुंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ के 37 ब्लॉक्स, 127 ग्राम पंचायतें और 273 गांव मुतासिर हैं। वहीं 20 वार्ड समेत 5 शहरी इलाके भी इस मौसमी सूरतहाल से मुतासिर हैं। मलकानगिरी में पानी के सड़कों और पुलों के ऊपर से बहने की खबर है। वहीं जिले में मिट्टी के तोड़े खिसकने से कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स को फाल किया है और राहत साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कुदरती आफात से निपटने की उड़ीसा की फोर्स NDRF और फायर खिदमत टीमों को तैनात किया है। एहतियाती कदम के तौर पर गजपति, नवरंगपुर और कालाहंडी में कल स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में मतला अबर आलूद रहने की भी पेशगोई की है। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इशारे में 1.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेंसेक्स 1,249 पॉइंट्स गिरकर 73,581 पर, जबकि निफ्टी 384 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,063 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वसी मार्केट में मिड कैप इशारिये में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान ज़र मुबादला बाजार में भी आज रुपये की कदर में 21 पैसे की गिरावट आई और ये डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 95 पैसे के करीब बंद हुआ। दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मेडिकल साइंस इम्तिहानात के कौमी बोर्ड NBEMS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट PG 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तालीमी साल 2026-27 के लिए बराह रास्त 6 साला कोर्सेज MD, MS, DNB, DRNB और PG डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तिहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनक्कद कराए गए थे। NBEMS ने कहा है कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इनफरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के

0: से मुनक़िद G7 तरक्याती वुज़रा के दूसरे इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में जनाब जॉर्ज ने इंसानियत पर मरकूज और जामे तरक्की की राह अपनाने पर जोर दिया जो सर्वोदय के उसूलों पर मबनी है। भारत की तरक्याती शराकत दारी का हवाला देते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने भारत के इस मौक़िफ़ को उजागर किया कि तरक्की महज माली इमदाद फराहम करने का नाम नहीं है बल्कि इसका मकसद मकामी सलाहियतों को फ़रोग देना और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाना भी है। जापान के आईची नगोया में जारी एशियाई खेलों 2026 में सीमा कुमारी ने खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ में मुल्क के लिए कांस्य का तमगा जीता है। उन्होंने आज शाम ये तमगा हासिल किया। पिछले 16 साल में एशियाई खेलों में खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले में भारत का ये पहला तमगा है। इस दौरान वुशू में भारतीय खिलाड़ी रोशीबीना देवी नाओरेम ने खवातीन के 60 किलोग्राम जुमरे में चीन की जियांग जियायो को 2-0 से शिकस्त के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस दौरान मर्दों के डबल स्कल्स में सलमान खान और सतनाम सिंह ने आज कांस्य का एक तमगा जीतकर आईची नगोया में एशियन गेम 2026 के दौरान अपनी रोविंग मुहिम का अख्ताम किया। भारतीय जोड़ी नगरागोवा इंटरनेशनल रेगेटा कोर्स में 6:13 और 25 मिली सेकेंड के साथ तीसरे नंबर पर रही। चीन के यी यूडी और नी येड 6:09 और 77 मिली सेकेंड के साथ पहले नंबर पर रहे और उन्होंने सोने का तमगा जीता। वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों ने 6:10 और 49 मिली सेकेंड की कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया। ये मर्दों के डबल स्कल्स में भारत का पहला एशियन गेम्स तमगा है। इस दौरान निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाश ढालीवाल की जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता है। मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में एशियाई खेलों की तारीख में भारत का यह पहला तमगा है। भारतीय जोड़ी ने 48 में से सिर्फ 4 निशाने गंवाए और जनूबी कोरिया के साथ बराबरी पर रही। इस दौरान वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में तमगा जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर अजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीर अजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर लाने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशू में चांदी के तमगे जीते हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा अपने नाम किया है जबकि डबल्स स्कल रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए विधाता फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं तेरी कसम फिल्म का गीत। इसे गाया है अमित कुमार ने, आनंद बख्शी की शब्द रचना है और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

मन की आंखें। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। साहिर ने एक गीत लिखा है, मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गीत प्रेम रोग फिल्म से, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर, नरेंद्र शर्मा की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और कार्यक्रम के आखिर में सुनिए कामचोर फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। इंदिवर के लिखे गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinaz Dhaliwal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: भारतीय एथलीट्स दिखाने लगे रंग, एक के बाद एक मेडल और अब एथलेटिक्स में गोल्ड का इंतजार। इंडियन एथलेटिक्स का मेडल अकाउंट अब खुल चुका है और ट्रैक एंड फील्ड से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। अब इंतजार है उस सुनहरे पल का जब पोडियम पर गोल्ड के साथ भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। शुरुआत करते हैं मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूवम अराजू, विशाल

0: थेनारसु, विद्याराम राज और मनु टीएसके क्वार्टरेट ने 3:14.46 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाउ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000 मीटर रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000 मीटर में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100 मीटर की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100 मीटर में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for India in rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1,000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2,000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jaakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Inanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a three-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yongbok found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
2: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज़्बेकिस्तान की नबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई, इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
3: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chotrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chotrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuong Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in in the quarterfinals. Joshan Achanappa and B. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller, with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.

0: इंडियन कंटिजेंट वॉज इन एक्शन इन कबड्डी। प्रेरणा शर्मा हैज मोर।
1: एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी 4 मुकाबले जीत कर ग्रुप स्टेज का समापन किया। यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ 2 मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार 3री जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdin Batbuk and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
0: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
1: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में 3रा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। 3रे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
2: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
0: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
2: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Laiton Jim, Varinder Singh, Oinam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.

0: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
1: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
0: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
1: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीत कर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
0: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna J. Menon are in action in the women's short put final, while the women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Well, Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow. And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, keno, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं फिल्म संगीत। कोहिनूर फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद।

सफर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इंदीवर ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार के गाए सफर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए अभय प्रवीण की जुगलबंदी। राग है विहाग और साज हैं बांसुरी और वायलिन।